0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: किसी का कैजुअल सवाल मुझे तो सोच में ही डाल दिया यार। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन जुड़ गई है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और किसी ने मुझे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि यार लाइफ में क्या एक्साइटिंग चल रहा है बताओ जरा, एंड समटाइम्स आपका आंसर होता है नहीं, कुछ भी नहीं, एंड यू फील दैट ओ माई गॉड लाइफ कितनी बोरिंग है हमारी। नो हॉलीडेज बुक्ड, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, नो ड्रामेटिक अचीवमेंट, बस आपका वही रूटीन, ऑफिस, घर, बच्चे, एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ। बट ये मैं सोच रही थी कि हमने नॉर्मल को इतना बोरिंग वर्ड क्यों दे दिया है, है ना, क्यों बना दिया। अ डे वेयर एवरीवन यू लव इज ओके, एक ऐसा दिन जहाँ आप अपना काम कर रहे हो, एक ऐसा दिन जहाँ पर बिजी रहना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, यानी आपके पास काम है और आप फिट हो, आप हेल्दी हो, वो काम करने नहीं है, नो ड्रामेटिक अचीवमेंट, बस आपका वही रूटीन, ऑफिस, घर, बच्चे, एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ। बट ये मैं सोच रही थी कि हमने नॉर्मल को इतना बोरिंग वर्ड क्यों दे दिया है, है ना, क्यों बना दिया। अ डे वेयर एवरीवन यू लव इज ओके, एक ऐसा दिन जहाँ आप अपना काम कर रहे हो, एक ऐसा दिन जहाँ पर बिजी रहना भी अपने आप में एक

जिंदगी का हर मोड एक्साइटिंग होना चाहिए. कभी कभार नॉर्मल इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग. तो आज इस मंडे मॉर्निंग के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि मंडे को तो हमने इतना बदनाम करके रखा है, बोरिंग सा, डल सा, लेकिन कभी कभार डल, बोरिंग, नॉर्मल, ये सब भी अपने आप में ब्लेसिंग है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और दिन की शुरुआत करते हुए दिस लवली मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग. जग लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट. ला ला.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
5: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

देखो एज अ पेरेंट्स ना हर कोई बहुत सारी चीजें सोचता है, बहुत सारे फैक्टर्स सोचता है जब अपने बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज करने की बात आती है। जैसे कोर्स फीस कैंपस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड सो मेनी थिंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक चीज जो स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में चेक करनी चाहिए वो है इज द प्रोग्राम इंटरनेशनली एक्रेडिटेड। यस, और इसीलिए UDST की ये अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस टेक्नोलॉजी के 6 प्रोग्राम्स को मिली है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फ्रॉम ABET विच इज अ US बेस्ड organization that evaluates engineering, computing and technology programs against established quality standards. Ab isme information system hai, information technology hai, chemical, electrical aur mechanical engineering ke programs hai, plus mechanical engineering technology diploma included bhi hai. Ab accreditation ka simple matlab kya hota hai main aapko batau. Sirf university ka naam nahi, these specific programs were independently evaluated including inka curriculum, faculty, student outcomes, facilities and continuous improvement. So parents or students ke liye ye kafi useful takeaway hai ki university shortlist karte waqt sirf kaun sa course hai ye mat poochhiye, kahin par bhi ho, is this particular program accredited? Ye bahut zaruri hai. And jaise maine bataya hai, Qatar mein rehte hue UDST ek कॉलेज है जो बहुत से बच्चे देसी बच्चे जो है वो ऑप्ट करते हैं। एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Well, that is Arman Malik ki awaaz mein ye khoobsurat sa gana right here. Chale aana, aur hum bhi aapko yahi invite kar rahe hain. Chale aa jaiye Mirchi Mornings par, aapka saath hai mere saath, yani Afreen ke saath.
1: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
0: Aur is khoobsurat morning zara good morning morning kar le. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आफरीन तो है आपके साथ, लेकिन बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं. जैसे राना हनीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम. देन वी हैव गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट मेक्स रश आर फील लाइक अ फ्रंट रो कॉन्सर्ट. थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग इमरान फॉर दिस मैसेज. देन आई हैव रॉबर्ट डिसोजा आमची मुंबई से गुड मॉर्निंग कहते हुए. देन आई हैव नदीम का गुड मॉर्निंग मैसेज विद दिस 5000 1896 मेरा नंबर है. गुड मॉर्निंग के मैसेजेस यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करती हूँ और साथ ही साथ रिप्लाई भी करती हूँ. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए अगला हालचाल जो है वेदर का देखते हैं.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
1: वेदर अपडेट.
0: ये क्या देख रही हूँ मैं, वेदर तो ये कह रहा है 41 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, 31 वेराइज इज द मिनिमम टेम्परेचर. लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो बेटर ही लग रहा था, लेकिन ये जो है ये आंकड़ों की बात है. एक्चुअल में क्या है, ये तो हम महसूस कर रहे हैं कि शाम के वक्त डेफिनेटली वेदर हैज रियली चेंज टू क्वाइट अ बिट. ह्यूमिडिटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो रही है. टेम्परेचर जो है वो आपको शाम को कम लग रहे होंगे, क्योंकि यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक. मॉर्निंग वॉक भी होती है, मैंने देखा अब, क्योंकि हमारा जो सनराइज है वो बहुत थोड़ा सा देरी से हो रहा है, इसीलिए धूप बहुत देरी से हो रही है, इसलिए मॉर्निंग वॉक्स भी शुरू हो गई है. लेकिन और एक बात यह है कि कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो वॉर्न्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हाई वेव्स ऑफ शोर टू नाइट. अगर आपका बीच पर जाने का प्लान है तो बिल्कुल ध्यान से जाइएगा. मीनवाइल शो को आगे बढ़ाते हुए सचिन चिकर और अरिजीत सिंह की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ. You stay tuned with me on Mirchi Hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ।
4: School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
3: तो दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा, नहीं? आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
6: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
7: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
6: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
7: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
6: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
10: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, that is Lata ji ki awaaz saath dete hue Udit Narayan right here on Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings brought to you by KIMS Health Medical Center.
0: Aur main hu Afreen aapke saath. चलिए जरा खेल जगत के बारे में बात करते हैं. कल ऐसा कुछ हुआ जापान में विच वॉज अ मोमेंट फॉर कतर. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ. और अगर कल एशियन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी आपने देखी हो तो एक मोमेंट कतर के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि जापान के आइशी नगोया से एशियन गेम्स का फ्लैग ऑफिशियली अब दोहा के पास आ गया है. यस, मतलब अब काउंटडाउन जो है ऑफिशियली ऑन है फॉर दोहा 2030. वेल, क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक काउंसिल का काउंसिल ऑफ एशिया का फ्लैग हैंड ओवर हुआ और ओलंपिक चैंपियन हमारे वेरी ओन यार मुताज बर्शम ने उस फ्लैग को सेंटर स्टेज पर कैरी किया. और सिर्फ फ्लैग ही नहीं, कतर को एशियन गेम्स टॉर्च और ओसीए फ्लैग के दो वर्जन भी रिसीव हुए, इंक्लूडिंग द हिस्टोरिक ओल्ड फ्लैग. अब मुझे इसका दोहा कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि एशियन गेम्स यहाँ पहली बार 2006 में हुए थे. तो जब 2030 में गेम्स वापस आएंगे, इट विल बी आफ्टर 24 ईयर्स. And तब का दोहा और आज का दोहा, obviously it's so different, right? In fact, कतर के लिए अब तो एडवांटेज भी है that major sporting infrastructure यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है. So दोहा 2030 की preparations में existing venues को use करना और sustainability पर focus करना plan का काफी important part है. कल दोहा 2030 की new identity वो भी रिवील हुई है एंड द टैगलाइन इज द गेम्स वी लिव फॉर. सो अब जापान का चैप्टर होता है क्लोज और अगले चार साल जो है स्पॉटलाइट स्लोली हमारे दोहा पर शिफ्ट होने वाला है. वेल, हैविंग सेड दैट, 2030 काफी दूर लग रहा है लेकिन ऑफिशियली जर्नी तो हमारी शुरू हो चुकी है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन विच यू साथ.

अगला गाना जो मैं आपको सुना रही हूँ ना, इट इज प्रोबेबली अ न्यू ट्रैक फॉर यू गाइज, या फिर जो म्यूजिक के शौकीन हैं वो ऐसे अंडररेटेड गाने कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेते हैं। वेल, प्रियांश श्रीवास्तव की आवाज और जॉनिता गांधी का साथ, दिस इज मुसाफिर कैफे का ये गाना एंड अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक आई रियली वॉन्ट टू लिसन टू। सो ये रहा काफी है ना राइट हियर ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ इस गाने के उस पार कुछ खबर लेकर आ रही हूँ आपके लिए, बने रहेगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ऑल द एंटरप्रेनर्स आउट देयर, इमेजिन कीजिएगा आपका एक छोटा सा पॉपअप स्टोर, वो भी कतर के सबसे खूबसूरत लोकेशन पर, यानी मीना पोर्ट पर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर की सबसे खूबसूरत जगह की अगर बात करें, और अगर आप मुझे काफी साल से सुनते हो तो यू नो आफरीन लव्स मीना डिस्ट्रिक्ट एंड ओल्ड दोहा पोर्ट। दैट पेस्टल कलर्ड बिल्डिंग्स, कॉबल स्ट्रीट्स, वाटर फ्रंट कैफेज, रेस्टोरेंट, आई कैन जस्ट गो ऑन अबाउट दिस प्लेस। वैसे मजे की बात बताऊँ आपको, डिड यू नो कि ओल्ड दोहा पोर्ट पर 100 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है एंड 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफे भी है। हैंडीक्राफ्ट्स है, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, एंटीक्स, बहुत सारी चीज। एंड खुद भी है, इमेजिन आर सेल्फ सेइंग कि इतना खूबसूरत फिश मार्केट। हाँ, फिश मार्केट खूबसूरत हो सकता है, ये आप मीना डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर देख लिए होंगे। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक ऐसा मार्केट जो हमारे मीना डिस्ट्रिक्ट में लगने वाला है विंटर के लिए खास, एंड दिस इज ब्रॉट बाय हीनत सलमा फार्म। ये एक रेगुलर मार्केट नहीं होगा, बता दूं मैं आपको, ये दिसंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक 4 महीने के पीरियड में डिफरेंट थीम्स के साथ ये मार्केट इवॉल्व करेगा। हर थीम में नए मेकर्स, लोकल प्रोडक्ट्स।

हैंडमेड गुड्स, आर्टिसनल क्रिएशन, सीजनल फूड वर्कशॉप्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, अगर आप खुद कोई स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, आर्टिसन है, फूड प्रोड्यूसर है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स अगर बनाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है और आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, देन दिस इज द वन। ऑर्गेनाइजर्स ने एप्लीकेशंस ओपन की है। हर थीम के लिए अराउंड 20 बूथ्स होंगे। एक थीम अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते की होगी और बूथ फी जो है दैट्स लिस्टेड एट अराउंड 6,000 कतरी रियाल फॉर दोज 2 वीक्स। प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स रिक्वायर है। सो वेल, एग्जैक्ट थीम डेट्स और टाइमिंग्स अभी कंफर्म होने बाकी है। तो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप इंटरेस्टेड है तो डिटेल्स पर इसके जरूर नजर रखिएगा। और वैसे मीना अगर कोई जाता ही है तो कितनी सारी चीजें कर लेता है ना, थोड़ा सा वाटर फ्रंट पर चल लेता है, कहीं थोड़ी सी कॉफी पी ली, अब थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे आपके पास, तो कितना ही मजा आएगा। माइक से दिल तक आफरीन है, मौसम भी साथ दे रहा है एंड ऐसे अपॉर्चुनिटीज तो बस छोड़ना मत इसे। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, फ्रॉम द मूवी पुकार, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
2: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
3: मैंने क्या किया पता?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी. जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
3: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास.
2: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
3: हैं? सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसी क्वालिटी ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको क्वालिटी ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी क्वालिटी ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
2: आप क्वालिटी ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
3: यार आप लोग
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
8: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफल कूपन.
7: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए.
8: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB.
7: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
10: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
11: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Coffee.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Mirchi Mornings पर आफरीन है आपके साथ. What a song, वेद शर्मा की आवाज में, right here on Mirchi. Very good morning and welcome back. देखिए, हमें तो अक्सर चीजें पता रहती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वी ऑल नो दैट, बट कभी कभार क्या है ना, हमारे ध्यान से निकल जाता है और सही टाइम पर रिमाइंडर एक्चुअली हेल्प्स. अब क्या है, देखो अब हमारा जो वेदर है, अब अच्छे वेदर की तरफ बढ़ते जाने वाला है, सो हम आउटडोर ज़्यादा जाएंगे. अब आउटडोर ज़्यादा जाएंगे तो जाहिर सी बात है, सिर्फ आप अकेले तो नहीं जाने वाले ना, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली कतर का पूरा कतर ही बाहर निकलता है. And at this time, there are so many beautiful places in Qatar where we start filming. यानी कहीं पे reel बना दी, तो कहीं पे photos निकाल लिए, ये सब कुछ होता है. अब ये सब कुछ हम अभी भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि filming without consent in Qatar बहुत बड़ी पनिशमेंट हो सकती है. यस, अंडर कतर्स पेनल कोड आर्टिकल 333, फोटोग्राफिंग और फिल्मिंग इंडिविजुअल्स इन अ प्राइवेट प्लेस विदाउट देयर कंसेंट कैन रिजल्ट इन अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन अप टू 10,000 कतरी रियाल. ठीक है, ये जो लॉ है, इट ऑल्सो कवर्स फोटोग्राफी और फिल्मिंग इन पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, व्हेन द फुटेज इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर इंसल्ट और डिफेमेशन एज वेल एज अनऑथराइज्ड फिल्मिंग ऑफ इंजर्ड और डिजीज पीपल एट एक्सीडेंट साइट्स. सो बस ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल अपने आपके जो खुद के फोटोज वीडियोज ये सारा सब कुछ आप निकाल सकते हो, हर जगह निकाल सकते हो, लेकिन किसी और को फिल्म करना है तो बस ये आप 100 बार नहीं 1,000 बार सोचना करने से पहले. मीनवाइल आफरीन है आपके साथ, निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है फ्रॉम द मूवी बर्फी. और बस इस ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे ना. आई एम इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
8: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
9: जबरदस्त ट्रैक्स।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वेल दैट वॉज विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में एक 90s का नॉस्टैल्जिक गाना और लास्ट की म्यूजिक वो याद आई आपको इश्क हुआ कैसे हुआ मतलब ये गाने में इश्क हुआ जो गाना था इश्क मूवी का अनु मलिक ने यहीं से धुन उठाकर उसे फिर पूरा का पूरा एक गाना ही बना दिया था वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स टाइम कि आप और मैं मिलकर यहाँ पर खेलें मेरा फेवरेट वाला गेम जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। और लेट मी टेल यू, आज का सीन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है शायद सबने नहीं देखी होगी, अंडररेटेड मूवी है, अच्छी मूवी थी। इट्स अ लव ट्राइंगल, मॉडर्न लव ट्राइंगल, इतनी भी पुरानी मूवी नहीं है, ना ये 90s की मूवी है ना ये 2000 की, 2010 के बाद की ही मूवी है। If I am right, yes, हाँ कौन सी मूवी है, चलिए पहले सुन लीजिए और फिर उसके बाद में और थोड़े हिंट्स दे दूंगी मैं आपको।
1: Lights, camera, scene test,
2: तूने तो कहा था ना भागना है।
3: हाँ मैंने कहा था भागना है, तेरे साथ भागना है, जहाँ तो बोले ना वहाँ आ जाओ, क्योंकि जब ऐसे बोलती ना मुझे लगता है तो बाकी सब संभाल लेगा। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं होता तो फिर मत बोलना भागने के लिए।
0: ओके कौन सा सीन है यार, कौन सा डायलॉग है ये, सोच रहे हो ना आप। 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर। चलिए मैं आपको फिर से ये डायलॉग आपको ये पूरा सुना ही देती हूँ।
2: तूने तो कहा था ना भागना है।
3: हाँ मैंने कहा था भागना है, तेरे साथ भागना है, जहाँ तो बोले ना वहाँ आ जाओ, क्योंकि जब ऐसे बोलती ना मुझे लगता है तो बाकी सब संभाल लेगा। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं होता तो फिर मत बोलना भागने के लिए।
0: All right. तो चलिए बताइए मुझे, व्हाट्सएप कीजिए 5000 1896 पर। लाइट ये कौन सी मूवी है, ये वो मूवी है जहाँ पर लव ट्रायंगल तो है ही, कह सकते हैं हम स्टोरी कुछ ना हम दिल दे चुके सनम टाइप की थी, कि जहाँ पर द प्रीवियस लवर्स है, फिर उसकी शादी हो जाती है विद अ वेरी स्वीट नाइस गाय, बट दिस इज नॉट हम दिल दे चुके सनम, दिस इज अ मॉडर्न टाइम की लव स्टोरी। और कौन सी है ये तो आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे सही वाह क्या बात है, सही जवाब आ चुके हैं ऑलरेडी, मोहसिन का आया है, नागेश का आया है, सो आई डोंट थिंक सो यू नीड मोर हिंट्स नाउ। चलिए जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ।
4: शायद कभी
0: तब तक के लिए अरिजीत सिंह की आवाज है ना आपको एंटरटेन करने के लिए, ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: about Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB।
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और मान जाओ मेरी जान कि कभी कभी आफरीन ऐसी गुगली जो फेंक देती है ना आपसे हैंडल नहीं हो पाती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का यहाँ पर सिलसिला चल रहा था जहाँ पर एक सीन सुनाया था मैंने आपको एंड बॉस बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया है और मेरे मानना तो ये है कि यार ये ज़बरदस्त है। मतलब आप लोगों का जो बॉलीवुड नॉलेज है ना दैट उनको तो मैं सल्यूट करना चाहूँगी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज का मैसेज मुझे मैसेज किया कि आफरीन आज का सीन तो डिफ़िकल्ट था, तो आपको ही चाहिए रहता है ना डिफ़िकल्ट वाला। लो फिर कौन सा सीन है वो लोगों को तो सुना दें जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और आज का सीन सुनो।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: अरे भागना है।
3: हाँ मैंने कहा था भागना है, तेरे साथ भागना है। जहाँ तो बोले ना वहाँ आ जाओ, क्योंकि जब ऐसे बोलती ना मुझे लगता है तो बाकी सब संभाल लेगा। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं होता तो फिर मत बोलना भागने के लिए।
1: ओके, अब जहाँ भागने की बात हुई ना तो काफी लोगों को लगा कि ये तो जब भी मैट होगा क्योंकि जब देखो वहां पर गीत तो भागती ही रहती है। लेकिन नो बॉस, ये जब भी मैट नहीं है। हालांकि ये पंजाब से जुड़ी हुई स्टोरी है लेकिन आपकी भी गलती नहीं होगी शायद क्योंकि आपने ये मूवी देखी नहीं होगी। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सेइंग डिफरेंट नेम्स लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया है जैसे यहाँ हुज़ैब का मैसेज है, बिजनेश राणा है, नागेश वाघ सेइंग द राइट आंसर, आई हैव मोहसिन सेइंग द राइट आंसर, दैट इज वो है देव, इट इज नॉट डंकी बाय द वे, बट द राइट आंसर इज मन मर्जिया। यस, तापसी पन्नू, अभिषेक बच्चन और विकी कौशल की ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। लेट मी टेल यू कि तीनों ने इसमें इतनी अच्छी एक्टिंग की है। फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई दिस मूवी डिडंट वर्क इन ऑन बॉक्स ऑफिस, इतना अच्छा नहीं काम की, लेकिन मैंने ये मूवी देखी है और मुझे ये अच्छी लगी है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी है पता है, इसमें इतने बेहतरीन गाने हैं कि मैंने अभी जो चुनना था कि कौन सा गाना बजाए इट वाज सो डिफिकल्ट बिकॉज दिस एल्बम हैज दिस ट्रैक हो गया, देन इट आल्सो हैज दिस सॉन्ग हंजुआ ददरिया, एंड यू नो व्हाट, इट आल्सो हैज दिस सॉन्ग। ये वाला गाना आपने शायद सुना नहीं होगा लेकिन ये मेरा फेवरेट गाना है। इश्क दरंग यारा क्रेवाला शेर, हाय हाय, बट आई थॉट आई विल प्ले फॉर यू हर्षदीप कौर की आवाज में जाजिम शर्मा का साथ।
4: सोनी सोनी सी मोहब्बत ने करे यार,
1: आफ्टर ऑल इट्स अमित त्रिवेदी की प्लेलिस्ट यार,
4: तेरी सोहबत
1: हैज टू बी गुड है ना,
4: है तंग
1: माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। एंजॉय दिस लवली ट्रैक ऑन मिर्ची एंड सॉल्ट।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और सिंपली आफरीन एक सिंपल सा अपडेट लेकर आई है आपके लिए।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल गोल्ड अपडेट आज का ये कहता है दैट 1 ग्राम गोल्ड पैम्प बार इज फॉर 561 कतरी रियाल, वेरस 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2626 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5182 कतरी रियाल, वेर एज पैम्प 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16015 कतरी रियाल, एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 59445 कतरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट्स। सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन भाव पे नजर रहनी चाहिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे।
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua, la burka.
1: Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरे डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी
3: है आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
3: आप देखिए बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता नहीं
3: कहाँ कहाँ से आ जाए मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ तो मार्क योर कैलेंडर 12th से 14th अक्टूबर DECC दोहा फूड कतर 2026 कनेक्ट डिस्कवर और ग्रो
5: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन लेट्स हियर इट फ्रॉम देम
7: इट वाज द बेस्ट आई लाइक द
8: मैजिक शो एंड यू
7: इट वाज वेरी नाइस
8: यू लाइक्ड इट
7: यस
8: वी शुड कम अगेन
7: यस
8: व्हाट्स योर नेम
7: आयरा
8: एंड योर्स
7: अनविता
8: व्हाट वाज द बेस्ट
7: द मैजिक शो दिस रिचार्ज इज सो कूल बेटर देन एनीथिंग एल्स
9: थैंक यू मिर्ची थैंक यू GWM वी एंजॉयड इट्स हॉट
10: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर
11: यस बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन
10: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR वो भी दो लकी विनर्स के लिए
11: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB
10: तो शॉपिंग करो कूपन लो और बन जाओ लकी विनर प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक अबू सिद्रा मॉल स्पेंड करो राफल लो और ड्राइव द ड्रीम
12: खट खट
13: Who that?
12: जाहिर
13: जाहिर जाहिर हूँ
12: जाहिर सी बात है मैं ही हूँ और कोई नहीं
13: खट खट Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1 Mirchi It's hot, it's hot. It's hot.

देखिए, कोई कहे, कहता रहे और जाने कितना भी कहे, लेकिन आप इस मामले में ना मेरी बात जरूर सुनना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड दिल चाहता है का ये पावर पैक्ड गाने के बाद में लेकर आई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त से एक्सचेंज रेट। और जैसे मैंने कहा कि कोई कितना भी कहे कि कहीं पर अच्छे आपको एक्सचेंज रेट्स मिल रहे हैं, लेकिन आईपे के एक्सचेंज रेट से बेहतर कहीं मिल सकते हैं? एक बार सोच लीजिएगा। वेल, आईपे के एक्सचेंज रेट ये कहते हैं, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.36, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज 76.22, बांग्लादेशी टाका जो है वो आपको मिल रहे हैं 33.70, एंड एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज आपको मिल रहे हैं 90.73, वेयर एज नेपाली रुपीज आपको मिल रहे हैं एक कतरी रियाल के बदले 42.16। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर बेचे पैसे, ढेर सारी खुशियां। एंड कमिंग अप नेक्स्ट, नीति मोहन की आवाज में अ वेरी पावर पैक्ड गाना राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
7: मैजिक शो एंड यू?
6: इट वाज वेरी नाइस।
7: यू लाइक्ड इट?
6: यस।
7: वी शुड कम अगेन?
6: यस।
7: व्हाट्स योर नेम?
6: आयरा।
7: एंड योर्स?
6: अनविता।
7: व्हाट वाज द बेस्ट?
6: द मैजिक शो।
8: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
9: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
10: एकदम सही सुना तुमने। किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
11: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
12: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6
15: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Well, that was शान की आवाज में from the movie सावरिया. What a beautiful song, yeah. मतलब ये गाने से मुझे अगर कोई याद आता है तो then has to be रणबीर कपूर, वो टॉवल वाले दुबले पतले से रणबीर. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन को.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: और वक्त हो चला है कि आप और मैं यहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोले और देखें आज क्या है यहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. वेल, आज मेरे बॉक्स से सिर्फ 3 words निकले हैं. यस, 3 words जो सिर्फ एक मूवी की तरफ इशारा करते हैं. और वो 3 words कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा. वो 3 words है अ दिल्ली सोशलाइट, ठीक है. द सेकेंड वर्ड इज क्यूपिड कह सकते हैं, मैच मेकर कह सकते हैं. एंड द थर्ड वर्ड इज फैशन. विच मूवी एम आई टॉकिंग अबाउट. ये 3 words कुछ ऐसे हैं जहां पर दिल्ली सोशलाइट है, देन आई हैव अ क्यूपिड, अ मैच मेकर, क्यूपिड और अ मैच मेकर यू कुड से. एंड द थर्ड वर्ड इज फैशन. कौन सी मूवी की यहाँ बात हो रही है? 5000186 इज माई नंबर. एक ऐसी मूवी है जहाँ पर कहानी एक लड़की के ऊपर है पूरी तरह से. अब ये बहुत सा बड़ा हिंट दे दिया मैंने. बताइए कौन सी मूवी की बात कर रही है यहाँ पर आफरीन. थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन आई एम श्योर यू कैन नेल इट. मीनवाइल मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट ट्रैक, दैट इज परिणीति चोपड़ा की आवाज में. आई लव दिस सॉन्ग यार. मतलब यार परिणीति चोपड़ा ने हार्डली कोई गाने गाए होंगे. हाँ, चमकीला मूवी में गाए हैं. देन दिस सॉन्ग आई थिंक सो इज ब्यूटिफुल सॉन्ग. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो, ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
7: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
5: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Khat khat.
9: कौन है?
8: इशांत.
9: इशांत कौन?
8: इशांत गदाधारी भीम. इशांत.
10: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: Well, that is Javed Ali ki pyari si meethi si awaaz mein from the movie Pushpa. This track right here on Mirchi. और आज जो है आफरीन ने आपको कंफ्यूज तो जरूर कर दिया है विद माय सवाल यहाँ पे जहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से तीन वर्ड्स निकले थे. मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स देखिए वो तीन वर्ड्स कुछ ऐसे थे जहाँ पर मैंने आपको बताया था दिल्ली सोशलाइट, ठीक है, उसके बाद अ मैचमेकर क्यूपिड, ठीक है, एंड द थर्ड वर्ड वॉज फैशन. अच्छा मैंने आपको ये भी हिंट दिया था दैट दिस मूवी वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ गर्ल, मतलब एक लड़की के जिंदगी के इर्द गिर्द इसकी कहानी होती है. लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ अलग अलग जवाब दिए हैं यहाँ पर. किसी ने कहा बैंड बाजा बारात, तो किसी ने कुछ, तो किसी ने कुछ. लेकिन सही जवाब जो है एक इंसान है जिन्होंने वॉइस मैसेज भेज के बताया है. चलिए उनकी आवाज़ सुनते हैं.
1: Good morning, Afrin.
0: Good morning.
1: This is Raj.
0: Haan ji, Raj.
1: And the answer is, movie name is Aisha.
0: All right.
1: Played by Sonam Kapoor.
0: Bilkul
1: Have
0: sahi.
1: A good day.
0: और राज लेट मी टेल यू इज अ गुड बॉय जो हर रोज मेरे ख्याल से गाड़ी को साइड में पार्क करके ये जवाब देते हैं. और हालांकि मेरी तरफ से कल इनका ना जवाब थोड़ा सा मिस हो गया था सुनाना, तो राज काफी नाराज हो गए थे मुझसे. तो ठीक है ना राज, आज तो खुश हो आप. मीनवाइल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. लेकिन किरण का भी यहाँ सही जवाब आया है. देन प्रिंसन ने पहले गलत दिया था, देन आफ्टर सम टाइम आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग ही ऑल्सो गेस्ट इट राइटली. एंड ऐसे ही और सोनी का यहाँ मैसेज आया है विद द राइट आंसर एंड समवन आई डोंट नो द नंबर विद अ 111 एंडिंग. इनका भी बिल्कुल सही जवाब आया है विद दिस. आयशा मूवी के ना बहुत सारे गाने हैं, ठीक है, गल मिठी मिठी बोल, देन सुनो आयशा, बट आई वांट टू यू टू हियर दिस सॉन्ग जो बहुत ही अंडररेटेड है लेकिन एक प्यारा सा गाना है. अ सॉन्ग फॉर द परफेक्ट इवनिंग्स जहाँ पर वार्म लाइट्स या फिर आप लॉन्ग ड्राइव पर हैं, बस एक फील गुड वाला गाना कहता है ना, बस ऐसी है. वन ऑफ माय फेवरेट्स निखिल डिसूजा अमित त्रिवेदी की आवाज में ये गाना शाम और मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

देखिए, हमारे कतर में वेदर जैसे जैसे ना बेटर होने लगता है, एक चीज का एक्साइटमेंट ना अपने आप शुरू हो जाता है। और वो है हमारे आउटडोर प्लान्स का। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। अच्छा, आप वो कैटेगरी में आते हो जो कैंपिंग बहुत एंजॉय करते हैं, डेजर्ट, टेंट्स, बारबेक्यू, लेट नाइट चाय, बेसिकली कतर विंटर्स का अपना ही एक मूड होता है, वो आप खुद बना लेते हो। तो बस इस बार आप सीजनल कैंप लगाने का प्लान कर रहे हैं तो डेट्स नोट कर लीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है 11th अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और एक्चुअल विंटर कैंपिंग सीजन जो है वो 25th अक्टूबर से लेकर 20th अप्रैल तक रहेगा। वेल, रजिस्ट्रेशन एक साथ सबके लिए नहीं खुलेगा। सेंट्रल एरियाज 11th से 13th अक्टूबर है, सदर्न एरियाज जो है 14 से 16 अक्टूबर है और नॉर्दर्न एरियाज जो है 17 से 21 अक्टूबर है। और अगर पहले राउंड में मिस हो गया तो 22 से 31 अक्टूबर तक रिमेनिंग अवेलेबिलिटी के लिए ऑल एरियाज रीओपन होंगे। वेल, रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट या BEAH से होगा और उसके लिए आपका नेशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम अकाउंट एक्टिव और डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए। वेल, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि बुकिंग के वक्त परमिट फी के साथ 10,000 का त्रिरियाल सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग दोज कैटेगरीज विच मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम परमिट फीस। और रिफंड को ईजी रखने के लिए अथॉरिटीज रिकमेंड कर रही है कि कैंप ओनर का ही बैंक कार्ड पेमेंट के लिए यूज कीजिए। सो वेल, ये उनके लिए है जो प्रॉपर टेंट के साथ में जो कैंप सेटअप करते हैं, जहां पर किचन भी होता है, सेपरेट कैंप साइट भी होता है, और ये खास उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। सो इफ़ यू बिलोंग टू दैट, या फिर आप उन शौकीन लोगों में से हैं जो आप हर साल कैंप सेटअप करते हैं, देन दिस वन इज़ फॉर यू। 11th अक्टूबर इज अ डेट जहां पर रजिस्ट्रेशन खुलने वाली है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट, यूज कीजिए। सो वेल, ये उनके लिए है जो प्रॉपर टेंट के साथ में जो कैंप सेटअप करते हैं, जहां पर किचन भी होता है, सेपरेट कैंप साइट भी होता है, और ये खास उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। सो इफ़ यू बिलोंग टू दैट, या फिर आप उन शौकीन लोगों में से हैं जो आप हर साल कैंप सेटअप करते हैं, देन दिस वन इज़ फॉर यू। 11th अक्टूबर इज अ डेट जहां

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hi. Ye से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
1: तो वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
8: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
7: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
8: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
7: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
9: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
10: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
4: उत्तराखंड का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6
12: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो अगले 40 सेकंड जरा ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कुछ कॉमन ड्राइविंग मिस्टेक्स को लेकर मोटरिस्ट को एक रिमाइंडर दिया है। देखिए, इंटरेस्टिंगली ये कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं है जो हमने कभी देखी ही नहीं है, सामने वाले को करते हुए भी देखा है। एंड ऑनेस्टली कभी ना कभी हमसे खुद भी हो जाती है। सो वेल, MOI ने हाईलाइट किया है कि अनसेफ या सडन लेन चेंजेस या फिर ड्राइव करते वक्त फोकस लूज करना, सामने वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन ना करना और किसी रोड पर एंटर या टर्न करते वक्त पहले प्रॉपरली चेक करना कि यार रोड क्लियर है या नहीं। और देखिए, ये लास्ट वाला तो ना मेरे साथ हो चुका है, यानी मैं इसके शिकार रह चुकी हूँ रिसेंटली लास्ट मंथ ही, कि यार कोई ऐसे सडनली एंटर कर गया था लेन में सामने मेरे एंड देन हो गया छोटा सा एक्सीडेंट। वेल, ये सारे रीजंस जो है एक्सीडेंट का रीजन जरूर बन सकते हैं। अब ये सारी बातें आप कहोगे हमें पता है, फिर आफरीन रिपीट क्यों कर रही है? बिकॉज अगर आप राइट नाउ ड्राइव कर रहे हैं और आफरीन अगर ये बोल रही है, तो चांसेस है कि अगला लेन चेंज करते वक्त एक बार एक्स्ट्रा मिरर चेक करेंगे आप, गाड़ी के बीच थोड़ा और डिस्टेंस रखेंगे आप, फोकस जो है ऑटोमेटिकली आपका रोड पर आ जाएगा। एंड बस इतना सा रिमाइंडर, अगर एक सडन ब्रेक, एक छोटा सा बम्प या एक एक्सीडेंट भी अवॉइड करा दे, तो फिर हो गया ना मेरे रिमाइंडर का काम और मोस्ट इंपॉर्टेंटली MOI के रिमाइंडर का काम। सो वेल, चलिए अब आईज ऑन द रोड बैक अगेन एंड इयर्स ऑन द अगला गाना। माइक से दिल तक आप चिंगे हैं आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: खट खट
6: अकबर।
5: अकबर
6: हु?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट हु दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: देखिए बड़ी ही रिलेटेबल बात है कि हमारी ये जो मेहनत और सक्सेस तक का जो सफर है ना, ये हम सभी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से पार करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड ज्ञान वाली बातें नहीं है, बड़ी ही रिलेटेबल बात है कि कभी ना कभी लाइफ में प्रॉब्लम हमको ना मेहनत करने से नहीं होती है, है ना, लेकिन प्रॉब्लम उससे होती है कि जब मेहनत कर रहे होते हैं बस रिजल्ट कहीं ना दिख रहा नहीं होता, और फिर वो डाउट, वो ओवर थिंकिंग सारी आ जाती है कि यार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम, कि इतना टाइम और एफर्ट्स जो लगा रहे हैं कुछ बनेगा भी। एंड आई थिंक सो यही ख्याल पर, यही इमोशंस जो हम कभी ना कभी गुजरे हैं इसके थ्रू, इस पर आज के मेरी अल्फाज है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है कि आज जो दर्द है कल वही कहानी होगी, आज जो आंखों में नमी है कल वही रवानी होगी, आज जो राह मुश्किल है कल वही आसान होगी। सुन रहे हो कि आज जो राह मुश्किल है कल वही आसान होगी, आज जो मेहनत खामोश है कल वही पहचान होगी, बस वक्त के आगे थोड़ा और टिक जा, बस वक्त के आगे थोड़ा और टिक जा, एक दिन तेरी हर खामोश दुआ तेरी जीत की जुबां होगी। क्या बात है, मुझे पर्सनली वो लाइन काफ़ी अच्छी लगी इसमें कि आज जो मेहनत खामोश है कल वही पहचान होगी, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट इमीडिएटली ऑफ कोर्स नहीं मिलता, और किसी ने सच ही कहा ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और बस इसी के साथ माइक से दिल तक आफरीन, आगे बढ़ते हुए अगले गाने की तरफ ऑन मिट्री, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्डा। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

करके मेरा भी यहाँ से उठने का वक्त आ गया है। लेकिन यार आई जस्ट लव दिस डुओ। सुखी पाजी और मिका का क्या कॉम्बिनेशन है। गाने में एक ऐसी रस्टिक रॉ आवाज रहती है, दमदार रहती है। एंड आई थिंक सो आई नीड टू हियर मोर ऑफ दिस डुओ। यार कोई तो सुन लो हमें। हाँ जी, जाने से पहले आज एक खास दिन है जिसका मेंशन तो बनता ही है। वेल 5th of October, टुडे इज वर्ल्ड टीचर्स डे। अब एज इंडियंस टीचर्स डे जब भी हम सुनते हैं ना, हमें 5th of September याद आता है, बिकॉज इंडिया में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट किया करते थे, करते हैं, अब भी करते हैं। लेकिन 5th of October की अगर बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे ग्लोबली सेलिब्रेट होता है। यूनेस्को ने 1994 में इसे एस्टैब्लिश किया था और ये डेट 1966 में टीचर्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्किंग कंडीशंस को लेकर अडॉप्ट हुई थी। एंड इसीलिए तब से लेकर अब तक ग्लोबली वर्ल्ड टीचर्स डे अगर किसी दिन मनाया जाता है तो वो है आज का दिन, 5th October। एंड एनी टीचर्स आउट देयर जो मुझे सुन रही है, हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत याद आती है, या फिर फॉर दैट मैटर टीचर्स की जब बात करें ना, तो इट टेक्स एवरी वन ऑफ अस टू नॉस्टैल्जिया। वो दिन जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में हमारी टीचर्स हुआ करती थी, कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती थी तो कोई फेवरेट होती थी हमारी, किसी टीचर की हैंडराइटिंग बोर्ड पर समझ नहीं आती थी और किसी टीचर्स का पता है एक डायलॉग बिल्कुल स्टैंडर्ड होता था, उनके कहने से पहले ही ना वो डायलॉग हम या पूरी क्लास अपने आप में ही मन में कंप्लीट कर लेते थे। ऐसा कुछ होता था ना, है ना। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, सल्यूट है ये सारी टीचर्स को। एज पेरेंट्स जब बच्चों की छुट्टियां होती है और उस छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए बच्चों को एंटरटेन करना होता है, हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है, एंड इट्स लाइक अ बिग टास्क ऑनेस्टली। बट टीचर्स हर रोज कितने सारे, कई सारे बच्चों को कितने खूबसूरती से हैंडल भी करती है, पढ़ाती भी है, एक वैल्यूज भी देती है। एंड ये बात तो जरूर है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग पेरेंट्स तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल टीचर्स का भी होता है। सो हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे, और इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी अलविदा। कल मिलूंगी, कल फिर से सेम टाइम सेम शो, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मिर्ची मॉर्निंग्स पर। चलिए फिर, इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। और अगला गाना बहुत प्यारा गाना है, बिग प्राक और जसलीन रॉयल की आवाज में, शेरशाह मूवी से, अ ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना। माइक से दिल तक आप शीन की तरफ से, ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: रख रख,

कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। एंड सच कहूँ यार, इस फिल्म की अगर हम बात करें, मनीषा कोइराला की वो खूबसूरती की बात करें, या तो फिर अनिल कपूर ने जिस तरह से पूरे के पूरे सीन को निभाया है, इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है, भाई कहते हैं ना, मतलब कुछ फिल्में और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए सुने नहीं जाते बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब जब हम इस फिल्म का कोई भी गाना सुनते हैं, भाई असर जो है ना, कुछ ऐसा ही होता है। 1942 अ लव स्टोरी। एंड सच कहूँ यार, इस फिल्म की अगर हम बात करें, मनीषा कोइराला की वो खूबसूरती की बात करें, या तो फिर अनिल कपूर ने जिस तरह से पूरे के पूरे सीन को निभाया है, इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है, भाई कहते हैं ना, मतलब कुछ फिल्में और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए सुने नहीं जाते बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब जब हम

ने की कोशिश करें. सो टुडे इज 5th of October और मंडे ने, सोमवार के इस दिन ने हमारी जिंदगी में दस्तक जो है ना वो दे ही दिया है. यार सच कहूं, कतर में रहने के बाद ना मैंने एक बात जरूर सीखी है कि जिंदगी में रूटीन कैसे आता है. क्या आपने कभी ऑब्जर्व या नोटिस किया है, बचपन के दिनों में हम जब अपने पापा को देखा करते थे या अपने घर के किसी भी बड़ों को देखा करते थे, फॉर दैट मैटर अगर हम अपनी ही बात करें, भाई स्कूल जाने के अलावा ना हमारी दूसरी कोई रूटीन नहीं होती थी, क्योंकि ट्यूशन जो है हमने इतना गप्पा मारा है कि इसके बारे में बताएं तो क्या ही बताएं. सिर्फ रूटीन एंड डिसिप्लिन के नाम पर एक ही चीज़ होती थी कि स्कूल टाइम से जाना है एंड टाइम से लौट कर इनफैक्ट उससे पहले आने की कोशिश करने हैं, क्योंकि दोस्तों की पलटन जो हमारा इंतजार कर रही होती थी. लेकिन कतर में आने के बाद एक फिक्स टाइमिंग पर सोना, फिक्स टाइम में उठना, अपने दिन को एक पर्टिकुलर वे में व्यतीत करना या पूरी तरह से उसे स्पेंड करना, यू नो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग है. इनफैक्ट कई लोग जो स्पोर्ट्स में हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया ये जो है ना हमारे लिए एक रूटीन है, एडिक्शन है कि इस वक्त खेलने जाना है, इस वक्त वापस आना है. एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी जो है ना इतनी सिस्टमैटिक हो सकती है. तो इस सिस्टम को प्लेस में लाने का काम मेरी लाइफ में जेन्युइनली किसी ने कहा है या किसी ने किया है तो वो है कतर ने, इस देश के एक लाइफस्टाइल ने. एंड आई एम प्रीटी श्योर ये कहानी जो है सिर्फ मेरी नहीं है, हम में से कई लोग इस बात से अग्री करेंगे कि कतर में आने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि एक रूटीन में खुद को कैसे बांधना एंड उस रूटीन को फॉलो करते हुए कैसे जीना. चलिए एक बात बताएं, क्या आपको भी ये डिफरेंस महसूस हुआ? बचपन में आप जिस तरह से बड़े हुए हैं या जिस भी देश से आप आते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल या कल्चर को आपने देखा है, वहाँ पे आने के बाद जब कतर पे आप आते हैं तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिला, विच इज़ वेरी अनलाइक द प्लेस दैट यू हेल फ्रॉम. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इन ऑल पॉजिटिव मीन्स एंड सेंस. इफ यू अग्री विथ मी, आई नीड अ थम्स अप राइट अवे एंड आई वुड वॉन्ट टू नो योर व्यूज. 5000-1896 Let's get connected there. Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu. Meanwhile, Ishq Vishq Rebound se show ki shuruaat karte hue ye agla pyara sa gana aap tak. Enjoy. Bandi ka naam Anshu.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: काम्या की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, क्या खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म कहो ना प्यार है। लेकिन जब जब इस गाने को मैं सुनती हूँ ना, सीधा अगर मुझे कुछ नज़र आता है तो वो है यार ऋतिक रोशन की वो आँखें, क्या खूबसूरत आँखें, एंड साथ अमीषा पटेल की यार नाजुक, क्या कमाल लगी है इस फिल्म में।
1: मिर्ची अंशु
0: भाई साहब, अगर इस फिल्म की बात करें, सैरा की बात करें, तो इस फिल्म में काफ़ी कुछ कमाल हुआ। अब वो किस तरह से हुआ, चलिए इसकी दास्तान इस वक्त मैं आपके बीच पेश कर ही दूं। वेल, फाइनली जब ऋतिक रोशन को उनके पापा यानी कि राकेश रोशन लॉन्च करने जा रहे थे, इस फिल्म को लेके बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस थे कि क्या ये फिल्म इतनी हिट होगी, मतलब क्या इनका बेटा अच्छा काम कर पाएगा। बात इतनी थी कि इसी फिल्म के साथ एक दूसरी फिल्म लॉन्च हो रही थी जिसमें अगर किसी की पहली झलक नज़र आने वाली थी तो वो थे अमिताभ बच्चन के बेटे यानी कि अभिषेक बच्चन। आई मीन टू बिग लॉन्चेस ऑल एट द सेम टाइम, ऋतिक रोशन एक तरफ एंड एक तरफ अभिषेक बच्चन। पूरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा उम्मीदें अगर किसी से थी तो दैट वॉज अभिषेक बच्चन, आफ्टर ऑल अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं। इनफैक्ट कहो ना प्यार इस फिल्म की मैं बात करूँ तो राकेश रोशन वॉज क्वाइट क्लियर कि इस फिल्म में अगर वो ऑन स्क्रीन किसी को साथ में लाना चाहते थे इनिशियली, सो दैट वॉज करीना कपूर। लेकिन करीना कपूर की मम्मी को ये लगा कि भाई जब अमित जी का बेटा लॉन्च हो रहा है तो उससे बढ़कर मेरी बेटी के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी और क्या ही हो सकती है, एंड बस इसी के चलते कहो ना प्यार है को उन्होंने मना किया एंड रिफ्यूजी का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया। अनडाउटेडली करीना कपूर जो है इतनी खूबसूरत लगी, इतनी कमाल लगी, एक्टिंग जो है इनिशियली शायद लोगों को उनकी इतनी अपीज नहीं की, लेकिन अपने लुक से सबका दिल जो है उन्होंने पूरी तरह से जीता इन द फिल्म रिफ्यूजी। लेकिन इन दोनों फिल्म के लॉन्च के समय भाई साहब, अगर एक नए सितारे का जन्म हुआ, एक ऐसे उभरते हुए सितारे का जन्म हुआ जिसने जेन्युइनली बॉलीवुड की दुनिया को रोशन किया कंप्लीटली, सो दैट वॉज ऋतिक रोशन। आई मीन मुझे अच्छे से याद है कि एज ऑडियंसेस व्यूअर्स कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी ना कितना एक अलग सा माहौल था, जी अमित जी का बेटा लॉन्च हो रहा है, अमिताभ बच्चन का बेटा लॉन्च हो रहा है। कहते हैं ना यार, कभी कभी जब आपके घर पे एक्सेल करने वाले काफ़ी कमाल लोग होते हैं ना, तो उस पीढ़ी को आगे ले जाने वाले लोगों पर परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसीलिए एक बात कहना चाहूँगी, हर किसी के अंदर अलग हुनर है, अलग काबिलियत है। अगर उनके घर पे कोई एक शख्स किसी मुकाम पे है, उसे ये सोचना कि दूसरे को भी उस लेवल तक पहुँचना ज़रूरी है, ये बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों को या अपने घर के किसी मेम्बर्स को कंपेयर करते हैं तो ये करना जो है ना, जरा सोच लें, समझ लें कि ना यार ये जो है सही नहीं। चलिए जी, अभी फिलहाल कविता सेठ नीरज श्रीधर की आवाज में अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, कुछ देर में होंगी कुछ खास बातें। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इज फ्रॉम द फिल्म धड़क 2। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त आपने और हमने सुन लिया, लेकिन अब कोई प्यारी सी धुन सुनने की तैयारी हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मी टीम मिर्ची। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि आप में से कितने लोग उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे गाने की म्यूजिक जो है ना हमारे सेल फोन में रिंग टोन हुआ करती थी, याद है उसका? भाई क्या दौर था, क्या जमाना था, जब हर किसी के नंबर के आगे ना हमने अलग अलग म्यूजिक सेट किया होता था। पापा के लिए एक अलग म्यूजिक, मम्मी के लिए एक अलग म्यूजिक, एंड जेनरिक कुछ लोग जो हमें ना पसंद है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अलग म्यूजिक। कहीं ना कहीं यार, जैसे जैसे जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती गई, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पीछे छोड़ा है। चलिए कोई नहीं, इस वक्त मैं आपके बीच कोई ऐसी धुन पेश करने वाली हूँ जो आपको सुननी है, एंड सुन के मुझे फटाफट से पहचान कर बतानी है कि भाई साहब ये है तो आखिरकार कौन से गाने की है, एंड बाद में इसके पीछे की कोई तो खास इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बिटवीन आई जस्ट लव दिस धुन टू द कोर। ये धुन जो है ना, ये म्यूजिक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये मेरी सबसे फेवरेट हुआ करती थी मेरे स्कूल या कॉलेज टाइम्स में। करेक्ट आंसर कहाँ देंगे? 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंशु। सो हियर वी गो।

चलिए फटाफट से बताने की तैयारी कर लीजिए कि अगर ये धुन है तो है किस गाने की। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस 5000 1896। अलीशा चिनाई की आवाज में अगला गाना सुनाती हूँ, लेकिन एक मैसेज आया है कि धुन क्या एक बार आप फिर से सुना सकती हैं। अजी बिल्कुल सुना सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो चीटिंग नहीं कराऊंगी यार, फटाफट से बताओ कि ये गाना है तो है कौन सा, साथ ही किस फिल्म से। मीनवाइल ये अगला गाना आप तक एंजॉय। बंदी गाना अंशु।

ऑलराइट, तिनका तिनका हाय अलीशा चनाई की आवाज़ एंड कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में मैं आपको लेकर गई जहाँ पे लगा भाई 90s की अगर हम बात करें तो नॉस्टैल्जिया को जीने का कुछ ना मज़ा ही अलग है। लेकिन चलिए अभी फिलहाल एक काम करते हैं, आपसे कुछ देर पहले एक धुन मैंने आपके बीच पेश की थी जो फिर से मैं सुनाने वाली हूँ। आपको उस धुन को जल्दी से आइडेंटिफाई कर मुझे आपसे कुछ देर में बस ये बताना है कि ये धुन है तो है कौन से गाने की, एंड साथ ही ये गाना आपने सुना तो किस फिल्म में सुना। करेक्ट आंसर आई बी वेटिंग फॉर यू 5000 1896 5000 1896 and here we go with the music. ऑलराइट, सो फटाफट से आइडेंटिफाई करने की बारी आ गई कि ये धुन है तो है किस गाने की। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। मीनवाइल अगला गाना जुबिन नौटियाल एंड सुवर्णा तिवारी की आवाज में फ्रॉम द फिल्म द वन आपके लिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
2: I don't have to mouth those lines.
3: Sorry bro, sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फराद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

वलादत रखारी की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ साहिबा। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक ऐसे एरा में इस वक्त मैं आपको लेकर चलती हूँ जब इमरान हाशमी के गाने हमारे प्लेलिस्ट में होना हमारी चॉइस नहीं होती थी भाई, कंपल्शन हुआ करता था। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक धुन एंड आपको धुन को आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस गाने की एंड साथ ही किस फिल्म से है। चलिए, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है क्यों ना जल्दी से धुन जो है मैं फिर से एक बार सुना ही दूँ। सो हियर वी गो। वेल, जितने भी रिप्लाईज आए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड अगर आपने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सही जवाब दिया होता। थैंक यू सो वेरी मच प्रीति, थैंक यू यूसुफ भाई फॉर बीइंग अ रेगुलर लिसनर, थैंक यू पाठक साहब एंड और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इतना बता दूं, अगर इस धुन की बात करें भाई, अगर 2008 में ना गए तो फिर क्या ही गए। आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म जन्नत, जिस फिल्म में अगर हमको कोई नजर आए तो वह इमरान हाशमी एंड सोनल चौहान। एंड खासकर अगर इस गाने की बात करूं, जरा सा की मैं बात करूं, दैट वॉज संग बाई के, कंपोज बाय प्रीतम एंड क्या गजब के अल्फाज यार सईद कादरी साहब के। यार चलिए, गाना बहुत प्यारा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमरान हाशमी को अगर आप सोचने की कोशिश करें, एक वक्त था जब अलग जलवा था इस जनाब का। एंड एक बार फिर से इस वक्त हमारी ज़िंदगी में इमरान हाशमी का एरा जो है वो लौट कर आ चुका है। अगर मैं आवारापन 2 की बात करूँ, शिवम के किरदार में जिस तरह से इस बंदे ने रोल निभाया ना भाई, इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर एट द मोमेंट आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट and all together a very fresh pairing and I'm talking about Imran Hashmi and Jenelia D'Souza. किसी ने सोचा था कि ये दोनों एक साथ ऑन स्क्रीन आपको नजर आएंगे? बिल्कुल ये होने जा रहा है गन मास्टर G9 में एंड ये फिल्म रिलीज होने वाली है 27th of November को एंड आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए, लेकिन अभी फॉरवर्ड नहीं, जरा बैकवर्ड चलते हैं। साल 2008, जन्नत फिल्म का नाम, केके का वो मैजिक, इमरान हाशमी, सोनल चौहान, जिस गाने की धुन सुनाई थी वही गाना आपके लिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Well, Josh Pradhan, Parampara Tandon ki ek khubsurat si awaz, and what a lovely track it is. Kya khubsurat sa gana from the film Baghi 4. Ye gana to is waqt maine aapko suna diya, lekin aapke aur mere kaam pate ki baat jo hai is waqt aap tak pahuncha dun. Mirchi Anshu. मतलब दोहा में विंटर्स दस्तक देने लगे और आप और हम जो है कैंपिंग की तैयारी ना करें ना यार, मतलब ये जो है लानत है, सच कह रही हूँ. मतलब फाइनली ये वक्त आ चला है कि आप और हम जो है अपने अपने टेंट्स निकालने की कोशिश कर लें, बारबेक्यू का सामान भी निकाल लें, साथ ही वो सारे दोस्त यार डिसाइड कर लें जो कैंपिंग में हमारे साथ चलेंगे. क्योंकि कई लोग जो है ना चलते हैं सिर्फ चाय और बारबेक्यू पीने खाने के लिए, काम करने के लिए नहीं. वेल फाइनली दोहा में द कैंपिंग सीजन इज बैक. वेल इतना बता दूं, अगर कतर के मच अवेटेड विंटर कैंपिंग सीजन की बात करें, सो ये ऑफिशियल एक स्टार्ट हो रहा है 25th ऑफ अक्टूबर से एंड ये चलेगा अंटिल 20th ऑफ अप्रैल 2027. एंड अगर आपको लगता है कि आपको भी विंटर कैंप बुक करना है तो रजिस्ट्रेशंस 11th ऑफ अक्टूबर से ओपन होंगे थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वेबसाइट एंड द बीआ ऐप. नाम बता दूं, BEEAH बीआ ऐप के जरिए आप जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं. लेकिन इस वक्त कुछ खास डेट्स याद रखना जरूरी है. अगर आप कैंपिंग के लिए सेंट्रल एरियाज में जाना चाहेंगे तो उनकी बुकिंग करनी होगी आपको 11 से 13 अक्टूबर तक. अगर आप साउदर्न एरियाज जाना चाहेंगे तो उसकी बुकिंग होगी 14 से 16 ऑफ अक्टूबर तक. नॉर्दर्न एरियाज 17 टू 21 ऑफ अक्टूबर एंड साथ ही बाकी सारे एरियाज के लिए 22 से 31 ऑफ अक्टूबर तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. भाई अगर डेट याद रखने में तकलीफ है, मेरी तरह कुछ नहीं करना है भाई साहब, सीधा मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाना है या बीआ एप्लीकेशन में जाना है, सारे डिटेल्स जो है आपको वहां मिल ही जाएंगे. सुनो ना यार, कुछ अच्छा बारबेक्यू वगैरह करना आता है, वेजिटेरियन भी कुछ बना लेते हो, मुझे साथ में पक्का लेकर चलना. मिर्ची की पूरी पलटन को लेकर चलना, बड़े एंटरटेनिंग लोग हैं. खाने पीने का इंतजाम, खर्चे का इंतजाम आप कर लो, एंटरटेनमेंट का जुगाड़ हम कर लें. क्या कहती पब्लिक? मीनवाइल श्रेया घोषाल एंड निहाल तरऊ की आवाज में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की अगली फिल्म ये प्रेम मोहलिया का ये प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.
1: मिर्ची फ्रेश माल.
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोहलिया.

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga.
1: La virtua la burga. Milci, burga. हेलो, हाँ जी बोलिए।
2: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
1: आप बोलिए ना।
2: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
1: कॉल मैंने किया है। हेलो।
2: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
2: नींद में है क्या?
1: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
1: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
2: हेलो,
1: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
1: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं, आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत।

0: ये मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
1: फोन नहीं कर रहा अभी।
0: आप अब देख बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। है ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ मैं।
1: चप्पल
0: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। फोन
1: आराम कर दिया तुम जैसे
0: जीना बता रहा हूँ से। इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
1: फोन आ रहा है, मेरी, मेरी आ रहा है। फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
0: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। तो अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: खट खट।
4: कौन है?
3: अज्जू।
4: अज्जू कौन?
3: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
4: खट खट, हु दैट?
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: तो ये अरिजीत सिंह एंड मिथुन की आवाज में खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अगर दिल झूमने की बात करूं तो अभी ना मौका भी है और दस्तूर भी कि ऐसा कुछ हो ही जाए। फेस्टिविटीज का मौसम हो, मौका हो, एंड हमारा दिल जो है इस बात को लेकर ना झूमे कि भाई जरा परचेसिंग हो जाए, खरीदी हो जाए, तो फिर और किस बात को लेकर झूमे। यार मुझे ना बचपन के दिन बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब भी दिवाली करीब आने होती थी, कुछ हो या ना हो, दो तीन चीज़ें घर पे ज़रूर होती थी। एक तो मम्मी के लिए नए जेवर बनवाए जाते थे, एंड दैट हैज़ बिन अ ट्रेडिशन जो मैंने घर पे तकरीबन 30 सालों तक तो फॉलो होते हुए देखा ही देखा है। मतलब बताया जाता था कि ऐसा है और ऐसा हमेशा होगा। एंड इसके अलावा अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो घर के सभी बच्चों के लिए नए कपड़े आएंगे, मतलब घर के हर एक सदस्य के लिए नए कपड़े आएंगे। एंड कितनी अमेजिंग अलग सी फीलिंग होती थी ना। वो बात अलग है कि दिवाली में मिले हुए नए कपड़े को साल भर हम जब जब पहनते थे, एहसास जो है ना वो नया वाला ही आता था। फिर चाहे हर बर्थडे पार्टी में, हर शादी में वही दो ड्रेस क्यों ना रिपीट हो। चलिए जी, इस वक्त अगर परचेसिंग की बात करें तो फेस्टिविटीज का ओकेजन एक बार फिर से आ चुका है, एंड अल फरदान एक्सचेंज में गोल्ड का रेट जो है ना आपको दिल खोल खोल के बुलावा भी दे रहा है। गोल्ड अपडेट। वैसे अगर आप परचेसिंग करना चाहेंगे सो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार टुडेज प्राइस रेट कथिर रियाल्स 561। वहीं अगर मैं बात करूं 5 ग्राम्स की सो दिस प्राइस रेट कथिर रियाल्स 2626। 10 ग्राम्स की बात करें सो दिस प्राइस रेट कथिर रियाल्स 5182। एंड अगर मैं 1 ounce की बात करूं सो दिस प्राइस रेट कथिर रियाल्स 16015। वहीं अगर 10 तोले की बात करें, तगड़ी परचेसिंग करनी है सो दिस प्राइस रेट कथिर रियाल्स 59445। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। चलिए जी, सोना चांदी खरीदने की बारी आ चुकी है, आप जो है जाके परचेसिंग करें, हम जो है आपके साथ साथ साथ देने के लिए जरूर चलेंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24-कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: खट खट। अगरकर।
7: अगरकर हूँ।
6: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
7: खट खट हू दैट।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: कि कुछ लोग जिंदगी में
1: जरा सोचे ना, हर एक माँ बाप का आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है
0: दिल में उनकी जगह
1: अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए। बॉस हम खुद का तो कर नहीं पा रहे
0: कि
1: बच्चों के लिए काफी कंसर्न है।
0: एक नाम
1: इतना बता दूं कि आज के डेट में स्क्रीन बच्चों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा
0: चाहते।
1: उनकी डे टू डे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि इतना जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन। कंसर्न को समझते हुए, इसकी सीरियसनेस को समझते हुए, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने लॉन्च किया है।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: बोला अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह। भाई साहब ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जब बात हो ठंड की, आने वाले दिनों की, और ऐसे में खाने पीने की बात ना हो, ना यार अंशु के साथ तो मुमकिन नहीं।
1: मिर्ची अंशु
0: वेल, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में एक ऐसी दास्तान लेकर मैं आ चुकी हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी भूख को बढ़ाने का काम कर ही देती है। यानी कि एक पहेली जो आप बुझाएंगे, अपनी भूख को बढ़ाएंगे, साथ ही सही जवाब मेरे साथ मुझ तक पहुंचाएंगे। वेल, फूड पे एक पहेली मैं आपके बीच पेश करूंगी, आपको बुझाकर बस मुझे ये बताना है कि इसके पीछे आखिरकार कौन सी डिश की कहानी छिपी है। करेक्ट आंसर पता चल जाए तो कहां भेजना है, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज 5000 1896 5000 1896। I'll really appreciate your audio message. Instagram will connect Mirchi Anshu and Mirchi One Qatar. तो चलिए जी, अभी इस वक्त पहेली बुझाने की तैयारी आप कर लें। देखें, सर्दियों से मेरा कुछ खास ही प्यार, पंजाब की खेतों से जुड़ा है मेरा संसार। देखो मैं हूँ हरी भरी, मेरा साथी सुनहरा, अगर ऊपर मक्खन आ जाए तो स्वाद हो जाए बड़ा ही गहरा। भाई साहब एक बात बताएं, आखिरकार कौन सी डिश है जो पंजाब की गलियों से आती है, ना पिज्जा है ना पास्ता है ना ही कोई फॉरेन की कहानी, देसी मिट्टी की खुशबू है इसकी असली निशानी। जल्दी बताओ कौन है ये जोड़ी जिसके बिना पंजाबी सर्दी की कहानी अधूरी है। Eagerly waiting for your messages. 5000 1896. Meanwhile, Harnoor and Shreya Ghoshal की आवाज में ये अगला गाना आप तक। Enjoy. बंदी का नाम अंशु।

0: Well, Himesh, we should make a power pack of us, C score ka saath, and what a lovely track it is. Lekin na, is gaane mein ek paheli aa jo mujhe aaj tak samajh mein nahi aayi. Matlab ye pehle aashiq the, baad mein afsana bane. Ye aashiq aur afsana mein difference kya hota hai? Pata hai kya tumko? Mirchi Anshu. एंड भाई साहब हिमेश रेशमिया में क्या रट्टा मारने की कला है, सच कह रही हूँ. जितनी बार अफसाना अफसाना इन्होंने कहा ना, समझ में आया, एक एक आंसर रट्टा मार मार के पास हुए. वैसे आशिक एंड अफसाना का डिफरेंस पक्का बताना. दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था उसका जो सही जवाब आपने दिया है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ. वल अब से कुछ देर पहले खाने से जुड़ी हुई एक पहेली मैंने आपसे पूछी थी एंड आपको बुझाकर बस ये बताना था कि ये डिश कौन सी जगह की आइकॉनिक डिश है एंड इसका नाम क्या है. नाउ जितने लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है मैं पहेली जो है रिपीट करती हूं. अगर सुनते सुनते ही लगा कि आपको सही जवाब पता चल गया है तो मुझे भेज देना 5000 1896 पर. हाँ जी, सर्दियां आ रही हैं तो बस उससे जुड़ा हुआ आज का सवाल. सर्दियों से मेरा कुछ खास ही प्यार, पंजाब के खेतों से जुड़ा मेरा संसार. एक हूँ हरी भरी, मेरा साथ ही सुनहरा, अगर ऊपर मक्खन आ जाए तो समझ जाओ स्वाद हो जाए गहरा. तो ये कौन सी पंजाब की जोड़ी है जिसकी एक सर्दी की कहानी इसके बगैर पूरी अधूरी है.
1: कौन है ये जोड़ी? चपाती है, मरना मुरली है. सर कोई फॉरेन की कहानी.
2: सरसों का साग, मक्के की रोटी, कुलवंत सिंह फ्रॉम वकरा.
0: हाँ जी, कुलवंत सिंह साहब, जब आपने जवाब दिया है तो सही दिए होंगे. बिल्कुल आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही. इसके अलावा जितने लोगों ने लिख कर भेजा वो भी 101% करेक्ट. थैंक यू सो वेरी मच रुपेश, थैंक यू यूसुफ भाई, वेल और भी बहुत लोग हैं, जैन अली हैं, थैंक यू जी सबको, दिल वाला बड़ा वाला शुक्रिया. चलिए अब एक बात बताऊं, अगर मैं सरसों का साग मक्के की रोटी की बात करूं तो इसका जो ये ओरिजिन है ये किसी फैंसी रेस्टोरेंट से नहीं आता है. इनफैक्ट मेज यानी कि मक्का जो है ये तो ओरिजिनल इंडिया का फूड हुआ भी नहीं करता था. सेंचुरीज अगो, अब से कुछ 100 साल पहले ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया एंड उसके बाद पंजाब की धरती में ये कुछ ऐसा मिला कि जब जब सरसों की खेती होने लगी तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे बनाया गया था एंड आफ्टर वर्ड्स इट बिकेम द स्टेपल फूड ऑफ पंजाब. सो जितने भी मक्के की रोटी एंड सरसों के साग के लवर्स हैं मुझे बताओ ना यार, कतर में कहाँ अच्छा वाला मिलेगा आने वाले दिनों में. 5000 1896 waiting for your messages. Meanwhile, जब पंजाबी तड़का लगाए तो ये गाना सुनना तो बनता है. Enjoy, बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La virba, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
4: Hello, ये हंसा से मेरी बात करो भाई.
5: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
5: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
5: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
5: मैंने क्या किया था?
4: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
5: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
5: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका इस टाइप
5: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
4: मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
5: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
5: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता,

0: और आपको खींचती हुई लेके आएगी आप श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसी कॉलर ट्यून लगती है। आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
0: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी।
1: हाँ बताइए
0: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
0: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हम सर, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जी जी जी
1: यार, आप लोग किसी दिन ना मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
3: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
4: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
3: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply. GWM ke Mirchi Recharge mein DMIS school mein bachcho ne kiya fun. Let's hear it from them.
5: It was the best. I like the magic show.
6: Magic show, and you?
5: It was very nice.
6: You liked it?
5: Yes.
6: We should come again?
5: Yes.
6: What's your name?
5: Aira.
6: And yours?
5: Anvita.
6: What was the best?
5: The magic show.
7: This recharge is so cool. Better than anything else.
8: Mirchi Recharge!
9: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
10: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
11: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
10: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
11: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
10: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
12: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
13: खटखट,
14: who there?
13: बनता
14: बनता हूँ।
13: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
14: खटखट, who there?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

अरिजीत सिंह ने निकिता गांधी की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई साहब, अगर आने जाने के सिलसिले की बात करें तो वो तो अब शुरू होगा बच्चों के एग्जाम्स के बाद, जब एक बार फिर से छुट्टियों का सिलसिला शुरू होगा एंड फेस्टिविटीज के मौके पे अगर आना जाना ना करें तो फिर कभी करें। यार पता है क्या, जब से मैं दोहा आई हूँ, आई मीन इट्स बिन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, कहीं ना एक ट्रेडिशन सा है जो हमने फॉलो किया है कि हम साल के न जाने कितने ही दिन दोहा में क्यों ना बिताएं, लेकिन जब भी फेस्टिवल्स की बात होती है, चाहे मैं दिवाली की बात करूँ या होली की बात करूँ, ये दो फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जब दिल करता है कि यार इंडिया जाना है। एंड इंडिया जाने की जब बात होती है, घर वालों के लिए कुछ खास तोहफे ना लिए, कुछ अच्छा काम ना किया, यार सारी जर्नी जो है ना अधूरी लगती है। वैसे मैं तो एक बात कहती हूँ, अगर आना जाना ना हो पा रहा है ना, तो अभी से आने वाले फेस्टिवल्स में जो नेक देना है उसकी तैयारी आप कर लें, सेविंग्स की शुरुआत कर लें। आईपे एक्सचेंज जो है आज गजब रेट्स दे रहा है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.37, पाकिस्तानी रुपीस 76.24, साथ ही नेपाली रुपीस 42.19, बांग्लादेशी टका 33.70, लंदन रुपीस बजाते हुए मचाते हुए डंका 90.73। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियां जो है बरकरार है, अरे आप और हम जो साथ हैं, स्टेडियम टू मच, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: आज के डेट में अगर मैं वक्त की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो सबसे बड़ा मुद्दा हर किसी की जिंदगी में अगर कुछ बना हुआ है तो वो है स्क्रीन टाइम।
1: मिर्ची अंशु
0: जरा सोचे ना, हर एक माँ बाप का आज के डेट में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि भाई अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए। बॉस, हम खुद का तो कर नहीं पा रहे, बच्चों के लिए लेकिन काफी कंसर्न है। इतना बता दूं कि आज के डेट में स्क्रीन बच्चों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, उनकी डे टू डे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि इतना जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन। वेल, इसी कंसर्न को समझते हुए, इसकी सीरियसनेस को समझते हुए, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने लॉन्च किया है एक 14 वीक का नेशनल कैंपेन, देयर प्रोटेक्शन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर 120 से ज्यादा एजुकेशनल एक्टिविटीज, वीडियोस, वर्कशॉप्स, स्कूल विजिट्स, पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हर तौर पर एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सके, उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके एंड स्क्रीन से उनका ध्यान हटाया जा सके। देखिए यार, मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि एज पेरेंट्स सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो वो है हमारी। घर से शुरू होती है ये बात। भाई साहब, रियल लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाए, उनकी दुनिया में कुछ इस तरह से शामिल हो कि रियल लाइफ की याद जो है ना उन्हें कतई ना आए। अरे जरा अपने ही बचपन के दिनों को याद कर लो, जवाब जो है सारे वहां मिल ही जाएंगे। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वारसी, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: फिल्में उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्डा। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: वेल पंजाब एमसी की पावर पैक आवाज और एक ऐसा गाना जिसके बगैर हर घर की पार्टी अधूरी, हर स्कूल का सेलिब्रेशन अधूरा। एंड भाई साहब, कॉलेज के फेयरवेल में अगर इस गाने में ना नाचा मेरी जान तो क्या ही किया।
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कह रही हूँ, मतलब दुनिया जहान में मैं कितना भी घूम के क्या कुछ क्यों ना खा लूँ, लेकिन हाय जो बात गर्मा गर्म दाल चावल के साथ पापड़ और अचार में है ना, इसके आगे सारी चीज़ें फीकी ना, कुछ नहीं अच्छा लगता। आई मीन आई गेट टू ट्रैवल अ लॉट बिकॉज ऑफ माई शोज एंड इवेंट्स, एंड हेंस आई गेट टू टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, बट सम हाउ तसल्ली, सुकून अगर आप किसी को कहते हो ना, तो घर के खाने को। एंड हाय हाय, बचपन से जो दाल चावल का तड़का लगा हुआ ना जिंदगी में अचार के साथ, वो मेरी जिंदगी में एक ऐसा स्टेपल फूड है कि सही मायने में मुझे तृप्त करने का काम बस यही करता है। तो आज खाना जो है, मेन्यू जो है, मैंने बड़ा सिंपल सेट किया हुआ है। काठी दाल चावल विद अ लॉट ऑफ घी, अचार, पापड़ के बदले ना आज मैं खाऊंगी वो साउथ वाले दैट बनाना चिप्स, एंड आई लव इट, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। आप मुझे बताएं, अगर मैं आपके ज़िंदगी में ऐसे खाने की बात करूँ जो सही मायने में आपको तृप्ति देता है, जो रूटीन में आप खाएं, कभी कभी बोर हो जाएं, लेकिन हाँ सुकून आपके लिए उसी खाने के पीछे छुपा हुआ है, सो व्हाट इज़ दैट रेसिपी और व्हाट इज़ दैट डिश फॉर यू। 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। बाकी बातें होंगी कल हबीबी, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची मास। अरिजीत सिंह एंड अमित मिश्रा की आवाज, गलती से मिस्टेक कोई ना करना, मिर्ची में हमेशा ट्यून इन रहना। एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: हैवान के एक्सपीरियंस के बाद प्रियदर्शन नहीं करेंगे अपने साथ ये हैवानियत।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: देखो यार, कभी कभी ऑडियंस किसी एक्टर को सिर्फ एक्टर नहीं, एक पर्टिकुलर फीलिंग के साथ एसोसिएट कर लेती है, राइट? और हैवान के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की पेयरिंग में शायद वही डिस्कनेक्ट नजर आया हमें। सो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की हेरा फेरी हो, गरम मसाला हो, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन जैसी कॉमेडीज ने एक ऐसी आइकॉनिक कॉमिक आइडेंटिटी बना दी जिसे ऑडियंस इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन हैवान में दोनों ने कॉमेडी से बाहर एक सीरियस क्राइम थ्रिलर के साथ एक्सपेरिमेंट किया अलॉन्ग विद सैफ अली खान। माइंड यू, ये 14 सालों बाद हुआ था जब सैफ अली खान और अक्षय कुमार स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे। सो इस फिल्म का रिपोर्टेड बजट था अराउंड 130 करोड़, लेकिन इंडिया में इसका थिएट्रिकल रन मात्र 9.92 करोड़ नेट पर क्लोज हुआ। और अब प्रियदर्शन ने कहा है कि हैवान के एक्सपीरियंस के बाद वो अक्षय के साथ नॉन कॉमेडी फिल्में तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से ऑडियंस उन दोनों को सीरियस स्पेस में देखना ही नहीं चाहती। वैसे इंटरेस्टिंग है ना, आज के टाइम में जब एक्टर्स अपनी इमेज तोड़ना चाहते हैं, ऑडियंस कभी कभी वही पुरानी केमिस्ट्री और वही फेमिलियर कम्फर्ट देखना चाहती है। मतलब स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट जरूर करो, बस ऑडियंस को ये मत भूलने दो कि उन्हें आपसे प्यार किस वजह से हुआ था। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई ऑलवेज से, कंटेंट एंड स्क्रिप्ट मैटर्स। और हैवान देखने के बाद तो मुझे ये दोनों ही इस मूवी से नदारत लगी थी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Milci. Iskabana, poskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietva la burka. Milci, burka.
1: Hello?
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: 26/11 मुंबई अटैक्स को 18 साल हो चुके हैं।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: लेकिन उस ट्रेजेडी की मेमोरी और उससे जुड़ी स्टोरीज आज भी रेलिवेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है अपकमिंग फिल्म प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम, जिसमें राजकुमार राव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म 16th ऑफ अक्टूबर को रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर इज आउट एंड इज रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग एट द सेम टाइम। क्या ही परफॉर्मेंसेस लग रही हैं हर दूसरे किरदार की। लेकिन फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है नेशनल अवार्ड विनर एक्टर ललित प्रभाकर का अजमल कसाब बनना। मराठी सिनेमा में आनंदी गोपाल, हम्पी और जॉम्बी विली जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए नोन ललित इस रोल में कम्प्लीटली डार्कर स्पेस में एंटर कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से प्रहार इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं, बल्कि उसके बाद जस्टिस तक पहुंचने वाली लीगल जर्नी को एक्सप्लोर करती है। उज्जवल निकम के मुताबिक फिल्म कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ट्रायल आर्ग्यूमेंट्स पर बेस्ड है, और मेकर्स ने उनके मैनरिज्म तक रिसर्च किए हैं। वेल, 18 साल बाद जब 26/11 एक हिस्टोरिकल डेट बन चुकी है, प्रहार उस हिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को कोर्टरूम के थ्रू दोबारा दिखाने की कोशिश करने वाली है। Like I said, the film is set to release on the 16th of October, so you better mark your calendars for this one. Mirchi pe main hu Shruti aapke saath. Stay tuned, it's hot.

0: से
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: ओह हेलो, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो हर रोज की भांति इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्म ची, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे इंस्टा पे जाके डीएम कीजिए अपना नंबर, ताकि मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं गौतम जी, आर यू रेडी?
3: हाँ बिल्कुल तैयार हैं।
2: ओके जी, तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसमें गांव वाले क्रिकेट खेलते हैं?
3: लगान।
2: क्या बात है, लगान के भुवन कौन है?
3: आमिर खान।
2: आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किस फिल्म में होती है?
3: आमिर खान गजनी।
2: गजनी में कल्पना वॉज किल्ड, कल्पना कौन है?
3: कल्पना उसकी गर्लफ्रेंड होती है आमिर खान की।
2: डेफिनेटली, नाम आप भूल रहे हैं शायद एक्ट्रेस का।
3: बहुत टाइम हो गया है, आई एम अनेबल टू रिकॉल। शी इज मैरिड टू माइक्रोमैक्स ओनर, दैट आई नो।
2: सारा डिटेल बताया।
3: कल्पना इज आसिन बेसिकली।
2: ओके, आसिन कौन सी मूवी में ढिंका चिका करती हैं?
3: आई थिंक मूवी कॉल्ड रेडी।
2: बहुत बढ़िया, रेडी में मेल लीड कौन है?
3: सलमान खान।
2: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो डॉक्टर बने हैं?
3: सलमान खान डॉक्टर बने हैं। ओके, ये ट्रिकी हो गया थोड़ा। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया?
2: नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
3: ओके ओके, नाइस नाइस। ओके,
2: मैंने प्यार क्यों किया मैं उनकी सेक्रेटरी कौन बनी है?
3: नो आइडिया एट ऑल। ब्लैंक ब्लैंक ऑन दिस मूवी, ब्लैंक ऑन दिस मूवी।
2: ओके, नेवर माइंड सर। बट इट वॉज लवली प्लेइंग द गेम विद यू, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया। अब इसके आगे का चेन देखते हैं कौन कम्प्लीट कर पाता है।
3: All right.
2: But आपने ये गेम जिस लेवल तक पहुंचाया है उसके लिए ये टैग तो आपको देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्म ची।
2: So bro, अगर इसके आगे का गेम खेलना चाहते हो तो यू नो द ड्रिल, बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
6: दवे
7: दवे कौन?
6: The way you love me, I हाय मर जावा।
7: खटखट, who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके डोंट किल मी फॉर दैट, बट मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। नॉटी माइंड कहाँ चले जाता है आपका। एनीवे सो हर रोज की तरह आज भी मैं एक नहीं दो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ। एक हमें मिल चुके हैं, दैट इज गौतम जी, बट उन्होंने हमारे इस गेम को जिस लेवल पे पहुंचाया उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ हैं गगन बत्रा। तो सलमान खान की फिल्म जिसमें वो डॉक्टर बने हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उससे आगे का सवाल है कि मैंने प्यार क्यों किया में उनकी सेक्रेटरी कौन है?
3: सुष्मिता सेन।
0: क्या बात है, सुष्मिता सेन की फिल्म जिसमें वो कॉलेज की टीचर बनी है।
3: जिसमें वो कॉलेज की मैं हूँ ना।
0: बहुत बढ़िया। मैं हूँ ना में भुलक्कड़ कॉलेज प्रिंसिपल कौन है?
3: बोमन ईरानी।
0: हाँ जी, बोमन ईरानी की फिल्म जिसमें वो मेडिकल कॉलेज के डीन बने हैं?
3: मुन्ना भाई MBBS।
0: बहुत बढ़िया। मुन्ना भाई MBBS में सर्किट के दोस्त कौन है?
3: मुन्ना भाई इटसेल्फ।
0: डेफिनेटली उनका।
3: संजय दत्त।
0: हाँ संजय दत्त की फिल्म जिसमें वो मांडवा नहीं देते?
3: अग्निपथ।
0: हाँ जी, अग्निपथ में कांचा चीना को कौन मारता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एक सीन में स्टैचू बने हैं?
3: वो धूम।
0: कौन सा?
3: धूम टू।
0: हाँ, धूम टू में फीमेल विलन कौन बनी है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में मरने के बाद सारे एक्टर्स के आजू बाजू डांस करती है?
3: मोहब्बतें।
0: बहुत बढ़िया। मोहब्बतें में वायलिन बजाने वाले प्रोफेसर कौन है?
3: शाहरुख।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है?
3: डॉन रीमेक।
0: डॉन 2 की जंगली बिल्ली कौन है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में अपने सारे हस्बैंड्स को मार डालती हैं?
3: सात खून माफ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप बने हमारे सेकंड मिर्ची फिल्मची फॉर द डे। इट वॉज लवली प्लेइंग द गेम विद यू।
3: थैंक यू।
0: तो चलिए इसी बात पे आपको भी ये टैग दे ही देते हैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: कसम से मेरे ये सेगमेंट ना एक्चुअली प्रूव कर देता है कि सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर दूसरा इंसान कूट कूट के फिल्मची है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Bhatt.
5: Bhatt? Are Bhatt who?
4: Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt. Bike bahut awaz karti hai.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: डरावनी नहीं है लेकिन डराती बहुत है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे लड़की नहीं, मूवीज की बात कर रही हूँ, वो भी बॉलीवुड मूवीज की। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार प्रॉपर हॉरर मूवीज तो हमें डरा नहीं पाती श्रुति, क्या खाक नॉन हॉरर मूवीज हमें डराएंगी, तो बाबू मोश आए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही मूवीज की होगी बात। और लिस्ट में नंबर वन पे है फिल्म संघर्ष, 1999 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे तनुजा चंद्रा ने डायरेक्ट किया था। वेल फिल्म में थे अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा। ऑल्दो फिल्म वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द लैम्स, बट देयर इज नो डाउट कि ये फिल्म किसी पॉइंट पे कम थी। स्पेशल मेंशन टू आशुतोष राणा का कैरेक्टर एज लज्जा शंकर पांडे। ऑल्दो एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी अबाउट दिस मूवी, बहुत अच्छा प्लॉट वगैरह सब कुछ था, बट यस दिस फिल्म कंट्रीब्यूटेड टू एन अनफेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बाकी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है देन इट डेफिनेटली इज अ वर्थ वॉच, और देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाइला ऐसी नॉन हॉरर मूवी भी हमें इतना डरा सकती है। तो बाबू मोशा ये मूवी जरूर देखना और फीडबैक्स मुझसे शेयर जरूर करना। MIRCHI SHRUTI, that is Mirchi Shruti ke naam se main Facebook, Twitter aur Instagram pe milungi. In the meanwhile, enjoy the songs right here on Mirchi with this Ladki Badi Filmi, It's Hot.
1: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: चढ़ेंगे हम बैंड वाले, एक है मेरे पास वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
1: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
0: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
1: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
0: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
0: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने में चल रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
0: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएंगे?
1: हेलो हेलो,
0: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
0: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
1: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
2: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
1: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ बजाने वाले थे?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: who that?
4: जस्सी।
5: जस्सी कौन सी वाली जस्सी?
4: जस्सी who has come आंटी जी।
5: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की डरावनी मूवीज का तो डर ही खत्म हो चुका है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आई एम श्योर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही ख्याल आते होंगे, क्योंकि आज के डेट में यार हॉरर मूवीज के नाम पे तो छोड़ो क्या ही अब उसके अंदर जाएंगे यार। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आपको कुछ ऐसी नॉन हॉरर मूवीज की बात बताऊं विच एक्चुअली कैन स्केयर द हेल आउट ऑफ यू। वेल, लिस्ट में नंबर वन पे मैंने बात की फिल्म संघर्ष के बारे में। नंबर टू पे लेट्स टॉक अबाउट ट्रैप्ड। भैया मॉडर्न डे नाइटमेयर बोल सकते हैं इस मूवी को। 2016 में आई थी ये फिल्म, विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट किया था। इट इज अ सर्वाइवल ड्रामा फिल्म बेसिकली, और फिल्म में राजकुमार राव एज शौर्य नजर आते हैं, एंड ट्रस्ट मी यू ही वाज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस लाइक ऑलवेज। बाकी इनका किरदार एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय का होता है जो अपने ही अपार्टमेंट में ट्रैप हो जाता है विदाउट फूड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आगे क्या कुछ होता है भैया वो तो आपको मूवी देख के समझ आएगा। इन कसम से बता रही हूँ, यू आर गोइंग टू स्टिक ऑन द एज ऑफ योर चेयर व्हाइल वॉचिंग इट। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म रोड के बारे में। एक टाइम था जब राम गोपाल वर्मा जो है ना वो अच्छी मूवीज बनाते थे, और उसमें से एक ये मूवी भी थी। एंड आई एम श्योर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग मनोज बाजपेयी, अंतरा माली और विवेक ओबेरॉय स्टारर ये क्राइम थ्रिलर फिल्म याद भी नहीं होगी। खैर ऐसा नहीं है कि द मूवी इज विदाउट फ्लॉज, बट इसे लिस्ट में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि द वे द स्टोरी मेंडर्स बिटवीन सस्पेंस एंड डार्क कॉमेडी अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ डिस्टर्बिंग थ्रिलर इज जस्ट वाओ। तो बाबू मोशाय, आप भी अगर इस लिस्ट में कोई नॉन हॉरर मूवी ऐड ऑन करना चाहते हो देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉरर से डर नहीं लगता साहब, घटिया हॉरर मूवी से डर लगता है।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और जब बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हॉरर मूवीज की आए तो आए हाय निकल जाता है, क्योंकि आज के डेट में तो कोई कंटेंट वाली मूवी आती नहीं है यार, कुछ भी बिना सर पैर के दिखा देते हैं। खैर, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी नॉन हॉरर मूवीज की बात बताऊं विच कैन एक्चुअली स्केयर यू। Well, इस लिस्ट में नंबर 1 पे वी टॉक्ड अबाउट संघर्ष, नंबर 2 पे ट्रैप्ड, नंबर 3 पे रोड, अब बारी है नंबर 4 पे टू टॉक अबाउट फिल्म दुश्मन। ये गाना तो आपको याद होगा, आवाज दो हमको हम खो गए। Well, इस फिल्म ने एज अ किड मुझे भयंकर डराया था, ऑल थैंक्स टू आशुतोष राणा फॉर हिज क्रीपी स्पाइन चिलिंग एक्ट एज गोलू पंडित। वेल, स्पेशल मेंशन टू काजोल एज वेल, क्योंकि उनका मेमोरेबल परफॉर्मेंस था इन डबल रोल। एंड संजय दत्त को कैसे भूल सकते हैं यार, सूरज सिंह राठौर के तौर पे, अ ब्लाइंड मिलिट्री वेटरन। और ऑफकोर्स टू एड अ चेरी ऑन द केक, देयर वॉज दिस अमेजिंग म्यूजिक ऑफ तनुजा चंद्रा डायरेक्टोरियल दिस फिल्म। खैर, मूविंग ऑन इन द 5 का पंच लिस्ट, बात करते हैं फिल्म कौन की ऑन नंबर 5। 1999 में आई थी ये फिल्म, विच वॉज अ साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर, जिसे डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने और लिखा था नॉन अदर देन अनुराग कश्यप ने, स्टारिंग उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी एंड सुशांत सिंह। ये फिल्म हमारी इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर्स में से एक है। इनफैक्ट प्लॉट इतना टाइट है कि फिल्म का सस्पेंस वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेस, जिसकी वजह से क्लाइमेक्स वॉज इवन मोर शॉकिंग। Well, अगर आप भी इस लिस्ट में कोई मूवी ऐड करना चाहो, then feel free to share that with me, मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। नाम की स्पेलिंग है SHRUTI। Meanwhile, enjoy the songs right here on Mirchi, it's hot.
2: मीठी मिर्ची, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
9: जानी हो

0: ये छोटे से डेक्स हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं होते थे।
1: 90 ml विद श्रुति।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, और अगर 90s में बड़े हुए हो तो एक चीज तो डेफिनेटली याद होगी, एंड दैट इज ट्रम्प कार्ड्स। WWF के कार्ड्स हो या क्रिकेट के, वो छोटा सा डेक हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं होता था। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ नहीं कि कार्ड्स बाहर, और फिर शुरू होती थी असली ट्रेडिंग, बार्गेनिंग और कंपटीशन। जहां WWF कार्ड्स में हम रेसलर्स की हाइट, वेट, विन्स और रैंकिंग्स कंपेयर किया करते थे, और क्रिकेट ट्रम्प कार्ड्स में तो इमोशंस और भी पर्सनल थे। सचिन, सौरव, द्रविड़, कुंबले, रन्स, उनकी सेंचुरीज, एवरेज, कैटेगरी चूज करो और देखो किसकी जीत होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिस भी दोस्त के पास सचिन का कार्ड निकला, उससे अपनी दोस्ती संभाल के रखनी है। और यार, किसी के पास रेयर कार्ड्स होते थे ना, तो वो तो स्कूल का अनऑफिशियल कार्ड डीलर बन जाता था। एक के बदले दो, दो के बदले तीन, और कभी कभी तो लंच पर पराठे भी नेगोसिएशन में आ जाते थे। उस टाइम हमें कलेक्टिबल्स या ट्रेडिंग कार्ड्स जैसे फैंसी वर्ड्स नहीं पता थे, बस इतना पता था कि मेरे पास ये है, तेरे पास क्या है। और शायद इसीलिए आज अगर वो पुराना ट्रम्प कार्ड मिल जाए तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इमोशनल वैल्यू प्राइसलेस होती है। क्योंकि वो सिर्फ एक कार्ड नहीं था, उसके साथ जुड़ी थी स्कूल की दोस्ती, लंच ब्रेक्स, कॉम्पिटिशन्स, वो छोटी छोटी फाइट्स और एक पूरा बचपन। तो बताओ फिर, आपका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड कौन था? अंडरटेकर, बिग शो, द रॉक, सचिन, द्रविड या कोई और? ये सारी बातें यहाँ के अलावा हम मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का ये गाना हॉलीवुड की मूवी में इस्तेमाल किया गया। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। यस यस यस, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं फिल्म स्वदेश की बात कर रही हूँ, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर। फिल्म में शाहरुख खान और गायत्री जोशी लीड रोल्स में थे, और इसका जो ये वाला एपिक गाना है, इसको इस्तेमाल किया गया है हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2 में। यस, यू हर्ड इट राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने का जो ट्यून है ना, वो साल 2001 में ही तैयार कर लिया गया था, बिकॉज दैट वॉज मेड फॉर द मूवी लगान। हां जी, लेकिन उस फिल्म में जब इस ट्यून को यूज नहीं किया गया किसी गाने के लिए, देन इट वॉज रीयूज्ड फॉर द मूवी स्वदेश, एंड देन ये एपिक गाना तैयार हुआ। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाय कि बड़े पर्दे पे जो कहानी देखने जाते हैं हम, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए, आई डू द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Milci, burga. हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता ना
1: कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों

0: कर दिया तुम जैसे
1: जीना जीना भाई यहाँ से भाग।
2: इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
0: फोन आ रहा है, मेरी आ रहा है फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ। मेरी बात सुनिए अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM Mirchi 1 Mirchi 1 It's hot.

0: रॉकिंग चेयर वाली फीलिंग देते हैं ये लोग।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पिटी उंडन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और नॉर्मल खड़े होना कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए दो कैटेगरी ऑफ पीपल व्हेन स्टैंडिंग की बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप नीचे चाय वाय के लिए जाओगे, अपने आसपास लोगों को देखोगे, तो कुछ लोग ना दोनों पैरों पे भार देके अपनी बॉडी का खड़े होते हैं, मतलब स्ट्रेट खड़े होते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि एक पैर पे ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे और उनका बॉडी पॉस्चर जो है थोड़ा लीन्ड होता है लेफ्ट पे या राइट पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, ओ हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का रॉकिंग चेयर वाला फील इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि ये इंसान कभी भी आपको सीधा खड़ा नजर आएगा ही नहीं। मतलब ये अगर चाय की चुस्की ले रहा है तो साथ में वो झूला झूलते रहेगा। मतलब ये इंसान ना स्थिर नहीं हो सकता, इसके बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट जरूर रहती है, जस्ट लाइक अ रॉकिंग चेयर व्हेन यू सिट ऑन इट। तो बताइए आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं? मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके ये बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स hot.

0: हाँ जी बाबू मोशाय, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं GYM जिम की बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में जो नाम आया ना, उसको वीकेंड प्लान्स के लिए छोड़ दीजिए। खैर, आज जिस फिल्म की बात हो रही है, आपको पता है उसकी स्क्रिप्ट एक जिम में डिसाइड की गई थी। एंड द मूवी इज मोहरा, जो 1994 में रिलीज हुई थी, एन एक्शन थ्रिलर स्टारिंग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड रवीना टंडन इन लीड रोल्स। सो फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय एंड राइटर शबीर बॉक्स वाला जो हैं, वो सुनील शेट्टी के एक जिम में जाया करते थे। एंड एक दिन एक्सरसाइज करते हुए शबीर बॉक्स वाले के दिमाग में प्लॉट आया, जिसको उन्होंने गुलशन राय से डिस्कस किया, विच अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस पर्टिकुलर फिल्म मोहरा। भाई साहब, मतलब लोग बॉडी बनाते बनाते मूवीज बना दे रहे हैं, और यहाँ हम हैं जिनको सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता बनाने में भी मौत आती है।
1: तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
0: खैर, इस दुख की बात करेंगे तो वो तो दूर तलक चलेंगे, इसलिए यहाँ पे जरा ब्रेक लगाते हैं और आपको अच्छे वाले गाने सुनाते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इस सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा ये
1: ओटीटी एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति और मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस सीजन 20 के इस वीकेंड के वार के बारे में, क्योंकि भैया एक नहीं दो दो ऐसे लोग जो फिलहाल कुछ दिनों से बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे, एक दूसरे के साथ नहीं बट साथ मिलके बाकी के घर वालों के साथ, वॉज काजी एंड माही। जिस हिसाब से माही का एकदम से दल बदला था और उनका झुकाव काजी की तरफ हो गया था, और फिर काजी ने कनिका को जो वो एक शब्द बोल दिया जो उनको पसंद नहीं आया, और उसके बाद ही वो लाइक यार मेरा इंटेंशन नहीं था ना वो, तो भाई कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को सॉरी नहीं बोलूंगा। और बस इसी बात पे जो इस वीकेंड के बाद में सलमान खान ने हवा निकाली है काजी के इंटेंशंस की, आहा हा हा, मजे ही आ गए। नॉट जस्ट दैट, यंग डीएसए और माही का इक्वेशन जिस हिसाब का चला गया है अब एकदम मुंह पे ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं, दैट इज अलग लेवल इंटरेस्टिंग। एंड भाई साहब उदिति जो फर्स्ट टू वीक्स में बिल्कुल नजर ही नहीं आई थी, अब बन चुकी हैं बिग बॉस हाउस की नई नवेली कैप्टन। बाकी बिग बॉस के अलावा एक और चीज जो मैं बहुत ही एडमेंटली देख रही हूँ ऑन ओटीटी राइट नाउ इज चुंबक तरारा तरारा। भाई आपने अभी तक ये सिटकॉम ट्राई नहीं किया है देन प्लीज गो वॉच इट। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा ऑफ सा लगे इसका कॉन्सेप्ट, बट धीरे धीरे इट ग्रोज ऑन यू। वैसे आप भी चाहे तो कुछ ऐसा ही कंटेंट मुझे भी ओटीटी पे देखने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग विद मी ऑन इंस्टाग्राम, मिर्ची श्रुति के नाम से मैं वहां मिलूंगी आपको। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
2: I don't have to mouth those.
3: Sorry, bro. Sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: लाल लाल कलर की बांगड़ी गाना सुनाया ये किसने, इसका है देखो ये नाम
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: 89.6 मिर्ची वन भर आ गया है मस्त मौला गौरव। मौसम धीरे धीरे राहत देनी शुरू करा, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोपहर अभी भी काफी गर्म है। वेल, इन सब के बीच किस तरह से कतर तैयारी कर रहा है एशियन गेम्स 2030 की, कैसे चिली में हमारे कतर की एक झलक दिख रही है, हमारे कल्चर को हमारे प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या खास है हमारे कतर में और होने वाला, एंड क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको कान लगाना है, ये सब कुछ अगले 4 घंटे में हम ही तो लेकर आएंगे, साथ में गेम्स खिलवाएंगे आपको, उस शो का पास भी दिलाएंगे जहां अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड जूनियर कुमार सानुआर, ये सब कुछ होगा मेरे साथ। लेकिन अभी कान टिका लो, मिर्ची लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो भैया, क्योंकि आ गया मस्त मौला गौरव। और अभी भी शाम के बजते हैं 4, तो एक गर्मा गर्म करक तो बनती है ना यार, हम जब तक करक लेके आ रहे हैं आप मिर्ची पर, एक करक गाना सुनो, इट्स हॉट। विशाल शेखर, बेनी दयाल, शिल्पा राव, शेर खुल गए।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieta la burka. Milchi, burka.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात करा भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज को भाई.
2: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
2: मैंने क्या किया?
3: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में.

0: कितनी डायरेक्ट होने, तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये
1: तो
0: जाना सनम,
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई।
0: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप।
1: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना,
0: आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे बहस करे जा रही है।
1: और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार होगा,
0: आपके कारण से। हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी ट्यून लगती है। आप बहस करे जा रही है मेरे से।
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
0: आपको क्वालिटी ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी क्वालिटी ट्यून लगाएंगी।
1: हाँ बताइए
0: आप क्वालिटी ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
0: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जे जे जे
1: यार, आप लोग किसी दिन ना मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
3: This initiative is driven by GWM.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
7: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
8: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भैया देखिए, हम तो यही कहेंगे जिंदगी में थोड़ी लेट सही हो जाए लेकिन लेट नाम के आगे ना लगे। और ये बचपन से हम सुनते हैं, इट्स बेटर टू बी लेट देन टू बी लेट मिस्टर और लेट मिसेस। तो इसलिए बस गाड़ी आराम नाल चलाइए। एंड कतर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस को ट्रैफिक एक्सीडेंट से जोड़कर बताया कि इन प्रैक्टिसेस को छोड़ दीजिए।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए गए हैं। मिनिस्ट्री ने साफ कहा है अनसेफ लेन चेंजेस, यस, जहां पर आप ऐसे बाएं से दाएं घूम रहे हैं मानो एकदम नाग की चाल चल रहे, ये प्रैक्टिस को बंद कीजिए। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि सारे ट्रैफिक रूल्स को और कहीं ना कहीं मोबाइल फोन बिल्कुल मत देखिए। कोशिश यही कीजिए कि सडन लेन चेंज ना करना पड़े, जब तक कि रोड क्लियर ना हो आप बिल्कुल लेन चेंज ना करें और कॉन्सेंट्रेट कर ड्राइविंग कीजिए। मोबाइल फोन एक तरह का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसको अवॉइड कीजिए, पेनल्टी भी आती है एंड इससे आपकी जिंदगी का भी रिस्क आता है। प्लीज इन बातों को बहुत ध्यान से रखिए। मैं नहीं चाहता यार कि हमारे ऊपर वाले द्वारा दी गई जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हमें उसे गंवाना पड़े। प्लीज आराम नाल गाड़ी चलाइए। स्पेशली मैंने देखा है फास्ट लेन में पीछे से आती गाड़ियां चिक चिक चिक चिक ऐसे फ्लैश मारती हैं, न जाने उनको कहां उड़ के चले जाना है। और जब आप देख रहे हो कि हमारे आगे गाड़ियां हैं, भैया हम कहां से राइट ले लें? हम तभी राइट लेंगे जब जगह मिलेगी ना। नहीं, आप पीछे फ्लैश चलाते रहते, आपको लगता है हम उठाएं अपनी गाड़ी और उड़ के हट जाएं कोने। प्लीज इन प्रैक्टिसेस को बंद कीजिए। जो ऐसा करते हैं, अगर आप उनके साथ बैठकर यू नो उनकी ड्राइविंग में आप उनका साथ देते तो उनको ये समझाइए कि यार ये गलत प्रैक्टिस है, इसे मत करो यार। 89.6 मिर्ची 1 पर ये अच्छी अच्छी बातें मस्त मौला गौरव लाते हैं अपने शो शाम शानदार में। तो कान लगाए रहो हबीबी, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मत तेरे पीछे पीछे चलना, जिंदगी में कभी आगे भी चलो भैया, वो जरूरी है। क्या पता जिसके पीछे तुम जा रहे हो वो कुएं में गिर रहा है, तुम भी गिर जा रहे हो, इसलिए अपने दिमाग के अकल का ताला खोलो और उसकी यूज करो। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हम आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। गोल्ड अपडेट सेफेस्ट माना जाता है।
1: गोल्ड अपडेट,
0: यस, अल फरदान एक्सचेंज जो कि हमारे कतर में पैम के ऑफिशियल एजेंट है, लेकर आते हैं स्विट्जरलैंड की स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड बार की, वो लेकर आए हैं पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 564 कतारी रियाल, पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2641 कतारी रियाल, पैम का 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार यू कैन गेट इट एट 5211 कतारी रियाल, वहीं पैम 1 औंस की कीमत आज है 16106 कतारी रियाल 16106 कतारी रियाल, एंड पैम का 10 तोला गोल्ड बार 59786, व्हाट अ नंबर, 59786। यस, ये रेट्स थे अल फरदान एक्सचेंज में अगर आप पैम के गोल्ड बार ले रहे हैं उनके। एंड मस्ट मोला गौर ने बताया है कि देखिए लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट बड़ा ही सही होना चाहिए और अच्छे रिटर्न की गारंटी गोल्ड भी लेकर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, और पिछले 10-15 सालों में आपने ये देखा है। 89.6 मिर्ची वन है, तो इन्वेस्ट करो वरना मेरे साथ एंटरटेनमेंट का ये डोज लेते रहो। मिर्ची इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन।

0: अनिरुद्ध रविचंद्र विशाल ललानी की आवाज में ये गाना आपके कानों तक पहुंचाया किसने? लेकिन कोई सूरज चाचू के पास ये खबर भी तो पहुंचाओ कि अक्टूबर आ गया है, थोड़ा तो हम पे तरस खाओ।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम तापमान आज 41 डिग्री सेल्सियस। बताइए भैया, 5 अक्टूबर की तारीख, सूरज चाचू अभी भी शुहादा अभी भी, हमको लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर आ गया। तुम हमको अभी भी अगस्त सितंबर की तरह तपा रहे हो सूरज चाचू, विच इज नॉट गुड। मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 30 रहेगा रात को। एंड बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जरूर मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि टेम्परेचर अब 38, 37, 36 तक 34 तक इनफैक्ट इस वीकेंड तक पहुंच जाना है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, लेकिन ह्यूमिडिटी का पारा 32% के आसपास, जो अब हमको कम सता रहा है। तो बस इंतजार कीजिए, चंद हफ्तों की बात है दोस्तों, फटाक से नवंबर आएगा, उसके बाद दिसंबर सब ठीक हो जाएगा। मिर्ची इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बनाया आपने, कैसे गाते हो मेज भैया?
1: मस्त मौला गौरव
0: ने ये गाना सुना दिया, लेकिन अब आपसे सवाल जवाब की बारी आएगी। एंड बारी इसलिए आएगी क्योंकि भाई जब बात हिमेश रेशम मियां की आए तो सवाल जवाब तो बनता है, एंड क्या पता इसी बहाने आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि इस घंटे में किसी एक लकी विनर को देने वाला हूँ मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट का पास। हाँ जी, वो कॉन्सर्ट जहां पर अनुराधा पौडवाल के साथ साथ विनोद राठौड़ एंड साथ में जूनियर कुमार सानू सब परफॉर्म करने वाला है। यस, तो आप अगर उसके पास जीतना चाहते हैं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए, और वो भी वॉइस नोट में कि हाय गौरव, मैं ये बोल रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब है ये, हिमेश रेशमिया की पहली फिल्म की हीरोइन का नाम बताइए। चलिए जी, हमने अपना सवाल फेंक दिया, अब आप हमें अपना जवाब फेंक फेंक के बताइए। 5000196 पर अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कीजिए कि हाय गौरव, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है हिमेश रेशमिया की पहली फिल्म की हीरोइन का नाम ये है। यस, बतौर एक्टर जब हिमेश रेशमिया किसी फिल्म में आए तो उसमें उनकी हीरोइन कौन थी? 5000196 पर सवाल का जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को इस घंटे मैं जिताने वाला हूं वो इवेंट के पासेस, जो कि होगा मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट शो बाय रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजो मिर्ची।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pietva la burga. Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
6: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
7: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
6: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए।
7: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB।
6: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम।
8: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
9: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
10: भारत का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: यार ऐसे गाने ना सच में शादी के घर की फीलिंग की याद दिला देते हैं। सुनील जॉन स्वानंद क्रिकेट ने मिलकर गाया नवराई माझी, लेकिन हमसे कह रहे हैं आपसे, हाँ जी बड़े सिंपल है सर, अगर आपको उस बॉलीवुड के मेगा कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना है जो रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल हमारे कतर में लेकर आए हैं, तो अनुराधा पौडवाल जी को सुनना चाहते हैं, विनोद राठौड़ जी को सुनना चाहते हैं, या फिर तजीबुर रहमान को जो कि जूनियर कुमार सानू है, तो हमारे सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। और किसी एक लकी विनर को इस घंटे हम देने वाले हैं इस शो के लकी पासिस। तो भाई उसके लिए करिए एक सिंपल सा काम, हिमेश रेशमिया की जो डेब्यू मूवी आई थी एज एन एक्टर, बतौर एक्टर हिमेश रेशमिया जिस फिल्म में आए थे उस फिल्म की हीरोइन का नाम क्या था, यही हमने आपसे सवाल किया है। जवाब ढेर सारे आ गए हैं, पर एक मौका और दे रहा हूं, 5000 1896 5000 1896 पर आप बताओ कि वो कौन सी एक्ट्रेस थी जो हिमेश रेशमिया की डेब्यू फिल्म की हीरोइन थी। हमें तो पता है, आपको अगर पता है तो भेज दो, लकी हुए तो हम देंगे आपको इस घंटे पासेस फॉर बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट इन कतर। मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: किशोर दा का ऐसा लगता है संगीत है और उनकी आवाज टाइप की फीलिंग देते हैं उसी तरह ये गाने में। फिलहाल के लिए आपको सुनाया किसने, देवी और सजनो हम आप जब साथ होते हैं तो सवाल जवाब का सिलसिला होता है और आज तो इनाम भी है। यस, हम उस मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट के टिकट दे रहे हैं जहां पर अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड तजीबुर रहमान जिन्हें जूनियर कुमार सानू कहते हैं, वो संगीत की महफिल जो रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल एस्पायर लेडीज हॉल लगाने वाले हैं वहां पर आप अगर जाना चाहते थे तो मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं कि हिमेश रेशमिया की फिल्म की पहली हीरोइन जो थी वो कौन सी थी, यानी कि हिमेश ने जब डेब्यू किया था उस फिल्म की हीरोइन का नाम क्या था?
1: हेलो गौरव, उसकी फर्स्ट एक्ट्रेस का नाम था हंसिका मोटवानी। थैंक यू।
2: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, कैसे आप? यूसुफ की बड़ी उसकी हीरोइन थी हंसिका समथिंग, हंसिका मोटवानी समथिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
3: Hi Gaurav, good evening, this is Rubella. So, Hemesh Reshamya's first movie actress was Mallika Sheravat.
4: So, Gaurav bhai, good evening. Wo heroine ka naam tha Hanshika Motwani, radio mein chase hot. Good evening Gaurav bhai.
0: Ji.
4: Heroine ka naam hai Hanshika Motwani. My name is Manjeet, radio mein chase hot.
0: Okay.
5: Hey Gaurav, namaste. Ji. Mera kaise naam bandao? Haan. Hemesh Reshamya ki pehli movie ka heroine ka naam hai Hanshika Motwani.
6: गुड इवनिंग ब्रदर भाई, गुड इवनिंग। हिमेश रेशमिया की फर्स्ट मूवी के हीरोइन का नाम है हंसिका मोटवानी। माय नेम इज करीम, करीम पठान।
7: हाय गौरव, मेरा नाम नीरज है। हिमेश रेशमिया की पहली मूवी की हीरोइन थी हंसिका मोटवानी।
0: पहले तो जितने लोगों ने हंसिका मोटवानी का जोरदार तालियां बजा भाई। यस, टीवी की वो छोटी सी बच्ची जो अचानक लोगों ने कहा इतनी बड़ी होगी कि उससे हिमेश की हीरोइन बनकर डेब्यू करना पड़ा। यस, हंसिका मोटवानी, तेरा तेरा तेरा सुरूर। यस, आपका सुरूर फिल्म की हीरोइन थी। एंड ये सही जवाब देकर सबसे पहले आयास गुल बन गए हैं विनर। आयास गुल, आपको मिलती है मिर्ची की तरफ से उस शानदार म्यूजिकल नाइट के पासेस जहां पर मेगा कॉन्सर्ट होने जा रहा है। 3 बड़े सुपरस्टार सिंगर्स एक साथ परफॉर्म करेंगे एंड आयास आप उसे देखेंगे एंड अगले घंटे एक और विनर। तब तक लिए सुनते रहो मिर्ची थॉट।
8: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Bolda, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
3: This initiative is driven by GWM.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए.
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB.
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

थोड़ी तो स्पीड ब्रेक लगा लो है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे हम अपनी किसी फ्रेंड से थोड़े कह रहे हैं, हम तो अपनी सैलरी से कह रहे हैं जो हमारे वॉलेट से ऐसे गायब हो रही है, ऐसे गायब हो रही है जैसे पापा के पॉकेट से कल कभी मम्मी गायब कर देती थी। यस मस्त मोलो गौरव, आपको बता दें इस वक्त एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.38 INR है, 26.38 रुपए भारतीय मुद्रा के। वहीं एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 90.73। अगर हम पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.16 पाकिस्तानी रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट था जाजो, एक कतरी रियाल के बदले बहिनी 42.17 को रूपाली रुपीज का रेट चाई, हाँ जी 42.17 नेपाली रुपीज में मिल जाए। उसके बाद बांधु बांग्लादेशी टका बात करेगा दादा, एक टका कतरे रियाल के बदले 33.77 तो 33.77 है ते रेट चिलम बांग्लादेशी टका। तो मस्त मोलो गौरव आपके साथ, अगर पैसे आ गए हैं घर भेज दो, इससे सेविंग भी होती है और आप घर जाके मौज भी कर पाते हो। तब तक लिए सुनते रहो मिर्ची।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: पिया जी मैंने ये प्रेम मोल लिया और हमने आपसे एक और कॉन्टेस्ट मोल लिया है। मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची घड़ी में शाम के 6:08 के करीब घड़ी का टाइम, एंड ऐसे में गाना खत्म हुआ ये प्रेम मोल लिया, एंड यही फिल्म आ रही है जिसमें आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी मेन रोल निभाने जा रहे हैं। एंड बड़ी बात यह है कि सूरज बड़जात्या साहब जब भी फिल्म बनाते हैं तो फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए तो फिल्में बनाते हैं, इसीलिए जितनी फिल्में बनाई सब सुपर डुपर हिट। लेकिन आप बता सकते हैं कि इससे पहले ये प्रेम मोल लिया से पहले इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? वैसे इतना ही कहूंगा कि इस फिल्म ने भी इतिहास रचा था, लेकिन भाई पारिवारिक फिल्म से थोड़ा हटकर बनी थी। 5001896 पर आपको बताना है, सर्च मत करिएगा, जो सबसे पहले जवाब देगा आज वो बॉलीवुड मेगा कॉन्टेस्ट यानी कि मेगा कॉन्सर्ट जो हमारे कतर में हो रहा है, रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल का, जहां राधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड तजीबुर रहमान जिन्हें जूनियर कुमार सानू कहते हैं, उनके पासेस मिल रहे हैं आपको। लेकिन पास का जवाब देने के लिए आपको आज फटाक से बताना है कि इससे पहले यानी कि ये प्रोम मोल लिया से पहले हमारे सूरज बड़जात्या साहब ने किस फिल्म को डायरेक्ट किया था? 5001896 याद रखिएगा, 5001896 पर आपको जल्दी से जवाब भेजना है, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा आज उसी को जिताएंगे, ये वादा है आपसे। 5001896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए। सूरज बड़जात्या साहब ये प्रेम मोल लिया इस साल लेकर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कौन सी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी? मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीने चाहिए टिकटे चाहे होने देना शोको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं है? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
2: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप आ सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
7: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्री

0: वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
1: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
0: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
2: खट खट,
3: कौन है?
2: अज्जू।
3: अज्जू कौन?
2: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
3: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: एंड वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, यार क्या लिखा है ऐसे गुलजार साहब ने, और इतनी खूबसूरती से अरिजीत सिंह और नीरा जोशी देशपांडे ने गाया है। एंड सुना अब बाबू बारी आ गई है बताने की, उस सवाल के जवाब जहां पर हमने ये पूछा है, सूरज बड़जात्या साहब जिनका ये प्रेम मोल लिया फिल्म आ रही है इस बार, एक बार फिर से फैमिली एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कौन सी फिल्म डायरेक्ट की थी, बिना देखे बताना था सबसे पहले।
1: गुड इवनिंग मस्तमौला भाई, मेरे गौरव भाई, कैसे हो आप? दिस इज योर रेगुलर लिसनर लाल मोहम्मद खान, और आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का आखिरी जो उन्होंने मूवी जो थोड़ी सी हटके थी फैमिली एंटरटेनमेंट से, वो थी सलमान खान की डबल रोल वाली मूवी प्रेम रतन धन पायो, जिसमें सोनम कपूर जी भी थी मूवी में। एंड पर्सनली मुझे बाकी राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के मुकाबले, दूसरे मूवीज के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल इट वाज गुड टू वॉच दैट मूवी फ्रॉम माय साइड। दिस इज लाल मोहम्मद खान, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, मैं आशर बोल रहा हूँ, आशर खान। सूरज भड़जात्या ने इसके पहले फिल्म ऊंचाई डायरेक्ट की थी, अमिताभ बच्चन, डेनी डेंगसोंगपा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊंचाई उनकी फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। थैंक यू।
3: सूरज भड़जात्या की लास्ट मूवी थी ऊंचाई, जो 2022 में आई थी।
4: अस्सलाम वालेकुम जी, इससे पहले जो उन्होंने मूवी बनाई थी वो है प्रेम रतन धन पायो, जिसमें सलमान खान भी थे।
0: मैं सच कहूं, जिन्होंने भी प्रेम रतन धन पायो है ना, सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है ऊंचाई फिल्म सूरज भड़जात्या की होगी, ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। और सच बताएं तो ये फिल्म क्रिटिकली बहुत एक्लेम की गई, लेकिन बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंचे, तो आज पहली बार ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने सर्च मार मार के आंसर दिए हैं। लकी विनर कौन है जो सबसे पहले जवाब लेकर आया है? नन अदर देन लाल मोहम्मद खान। लाल जी, आपको मिलता है मिर्च की तरफ से इस बॉलीवुड के मेगा कॉन्सर्ट का पास, जहां पर आप जाएंगे एंजॉय करेंगे इस इवनिंग को, तो आपको एक लकी पास मिल रहा है। एंड दो घंटों में अब दो विनर हो गए, और इसी के साथ आज ये कॉन्टेस्ट होता है समाप्त, जहां पर रैमी प्रोडक्शंस इंटरनेशनल हमारे कतर में लेकर आए हैं वो खूबसूरत शाम, जहां अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड साथ ही साथ तजीबुर रहमान, जिन्हें जूनियर कुमार सानू कहते हैं, वो तीनों परफॉर्म करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब ये तीनों स्टेज पर होंगे ना, तो कतर अपने 90s में खो जाएगा एंड कहेगा, यार मिर्ची पे जैसे गाने चल रहे हैं, आज यहाँ स्टेज पे भी एंजॉय कर रहे हैं, मिर्ची इट्स हॉट। अब तो बात 90s की आई है, तो 90s

0: जेड़ा नशा। नहीं नहीं हम नहीं थे सर, गाना खत्म हुआ थोड़ा सा इधर उधर हम फिर गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कूल में पढ़ाई का भी अपना एक अलग नशा होता है दोस्तों। मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे ना, मैं सच कह रहा हूँ, जिनसे मुझे इतनी चिढ़ंती, इतना पढ़ाई क्यों करते थे यार। मतलब मुझे ना वो एग्जाम से पहले ऐसी टेंशन देते थे हाफ ईयरलीज में ना, कि मुझे लगता था मैं फाइनल में फेल हो गया हूँ। हालांकि मैं एक दो सब्जेक्ट में ही फेल होता था, लेकिन लाल स्याही के निशान जब भी मम्मी देखती थी उनके हाथों से ना मेरे गालों का मिलन हो जाता था। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्कूल डेज वर द बेस्ट टाइम। शायद अगर ये हम पहले रियलाइज किए होते तो और एंजॉय कर पाते जितना मैंने किया है। लेकिन कल हम बच्चों के साथ ऐसे एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं। यस आइडल इन स्कूल, वी आर कमिंग टुमारो फॉर GWM मिर्ची रिचार्ज। यस, जहां पर GWM की हैवल V7 के साथ हमारी मिर्ची टीम पहुंचेगी। बच्चों के साथ ढेर सारा फन मस्ती धमाल होगा, एक कुछ फन सेशंस होंगे, क्वेश्चन आंसर एंड उसके बाद मैजिक शो। उसके बाद हम सब बच्चों से ढेर सारा फन मस्ती धमाल करके स्कूल से अलविदा लेंगे। तो बस तैयार हो जाओ। अगर आप आइडल इन स्कूल के जूनियर विंग के स्टूडेंट हो तो मौका आपसे है मिलने का मिर्ची की टीम का, एंड आई होप बहुत सारा करेंगे फन मस्ती धमाल। तब तक के लिए कान लगाते रहो, मिर्ची सुनते रहो, और पापा मम्मी को बताना क्या क्या हुआ स्कूल में कल। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
4: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था।
3: दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
6: Cut, cut.
7: Who there?
6: Whom are you?
7: Whom are you who?
8: Aray, whom are you looking for, madam?
7: Cut, cut. Who that?
9: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: रुखई महमूद और राघव चैतन्य की आवाज में माशूका गया आशिक आया। जब आपके साथ हूँ तो फिगर नॉट, घड़ी का टाइम भी बताता हूँ और आगे की बात भी बढ़ाता हूँ। शाम के 7:05 और कतर में कुछ खास चीजें जो चल रही है जो आपके कानों में पहचाननी बहुत जरूरी है, जैसे कि मताफ का वो एग्जीबिशन जो अब कल्चरल डायलॉग को चिली में बढ़ावा दे रहा है। यस, हम आपको बता दें, ट्रेवलिंग एग्जीबिशन योर घोस्ट्स आर माइन एक्सपेंडेड सिनेमाज एम्पलीफाइड वॉइस। यस, ये एक नया वेन्यू है जो कि कल्चरल एक्सचेंज में काम आ रहा है कतर एंड लैटिन अमेरिका के। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि अरब वर्ल्ड को आर्टिस्ट वॉइस को वहां अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया से लेकर चिली तक पहुंचाने का काम यहीं से हो रहा है। एंड मैं इतना ही कहूंगा, मताफ अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट डायरेक्टर जेना अरिदा ने यह बताया है कि किस तरह से कतर का यह प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से दुनिया में कतरी कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। वेल, इन सब के बीच कुछ और चीजें जो हमारे मिनिस्ट्री ने हमसे कही है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि हमें अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस को छोड़ना है क्योंकि यही ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कराती हैं, और हम सबको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है और बहुत कॉशन के साथ रोड्स पर चलना है। ये जो फ्लैशिंग वाली चीजें है ना सर, ये कम कर दीजिए। मुझे लगता है सर इस पर भी फाइन लगना चाहिए आने वाले टाइम में। अगर आपकी गाड़ी में कोई ज्यादा फ्लैश मार रहा है, रोड आगे खाली नहीं है, तो आप उसे रिकॉर्ड करके उसको भी फाइन कराना चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसा होगा, देख लेना, मैं बता रहा हूं। मतलब जैसे शादी में जब आप खाने की प्लेट लेके वीडियो मैन आपके पीछे नहीं पड़ जाता था, जब तक वो आपके खाने को कैप्चर ना कर ले तब तक आपके पीछे लगा रहता था, वैसे ही ये कभी कभी गाड़ी वाले फास्ट लेन में पीछे लग जाते। हमारी रोड जब तक खाली नहीं तब तक ऐसे फ्लैश मारते रहेंगे, हमें कभी कभी तो लगता है वही शादी वाले वीडियोग्राफर आ गए हमारे पीछे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
1: फिर कोई
2: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल पता
2: नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
1: आराम कर दिया तुम जैसे
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड
4: Looking to grow your business, expand your network, and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL, Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर
6: यस बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR वो भी दो लकी विनर्स के लिए
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB
5: तो शॉपिंग करो कूपन लो और बन जाओ लकी विनर प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक अबू सिद्रा मॉल स्पेंड करो राफल लो और ड्राइव द ड्रीम
7: हेलो शॉप्स Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो
10: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070 7687

सही आ रहा, तू तो रूठा नहीं है सर, बिल्कुल रूठा है। अगर आपसे बात नहीं करा है तो आप मनाइए। कि कतर में मौसम न जाने कब बदलेगा, उसका इंतजार थोड़े कर सकते हैं। फिलहाल एक चीज जो आज भी स्कूलों में नहीं बदली वो है गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग सर। एक ऐसी चीज यार जो मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी लाइफ में, मतलब सुबह सवेरे जाकर ब्लैक बोर्ड पर तारीख लिखना और उस डेट के साथ उस सब्जेक्ट का, उस पीरियड का नाम लिखना जो हमारे क्लासेस में होने वाले हैं। पहले यार स्कूल लाइफ की ऐसी कितनी हजारी यादें हैं जो हम चाह कर भी भूल ही नहीं सकते, वो मिटेगी नहीं। आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके स्कूल में वो टीचर्स का प्यार, वो टीचर्स की डांट, या फिर आप मार खाए हो मेरी तरह तो बात अलग है, वो भी याद रही होगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर का हमारे पेरेंट्स के सामने हमारी तारीफ करना, ये आपके साथ होता था, हमारे लिए तो बस बुराइयां ही मिलती थी। लेकिन यार हर चीज आज भी इतनी तरोताजा है, आप सोच नहीं सकते। क्लास फोर्थ से लेकर क्लास ट्वेल्थ में हजारों बार मैंने न जाने कितने टीचर्स को परेशान किया, पर आज भी जब स्कूल में ये पता लगता है कि गौरव आरजे बन गया ना, तो सब टीचर्स कहते हैं हमारा स्टूडेंट था, हमने उसे पीटा, ये नहीं बोलते, कहते हमारा स्टूडेंट था। यार स्कूल की बात ही अलग होती है। और ऐसी स्कूल्स में ना जब हम जाते हैं बच्चों के साथ मस्ती फन धमाल कहते हैं, तो उसका नाम होता है GWM मिर्ची रिचार्ज, जो कल हम लेकर जा रहे हैं कतर के आइडल स्कूल में, जो कि जबरदस्त पुराने स्कूल्स में से एक है एंड ढेर सारे बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं जूनियर विंग के साथ, कुछ क्लासेस के साथ हम ये मस्ती करने वाले एंड आई एम श्योर एक और खूबसूरत दिन जिसको आप चेकआउट करोगे मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर स्टोरीज में, एंड बाद में हम एक सारे मेमोरी की समरी रील के रूप में जरूर लगाएंगे। जरूर टैग करते रहिए वो स्टोरीज रीशेयर कर अपने बच्चों को, ताकि हम भी तो देखें, पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल में मिर्ची रिचार्ज में मस्ती क्या चल रही है। मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाय GWM 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार पता है सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? कि आप अपने लिए कुछ कर पाएं। उससे बड़ी कामयाबी होती है आप अपने साथ साथ अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाएं। और उससे भी बड़ी कामयाबी होती है जब आप अपने मुल्क लेकर के लौटे और आपके अपने लोग आपको प्यार से बहुत सारे सम्मान दें। और कतर के कुछ एथलीट्स ने यही कमाल किया इस बार आईची नगोया 2026 एशियन गेम्स में, और इसीलिए उन्हें मिला है वो सम्मान। प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हिज एक्सीलेंसी शेख जोवान बिन हमद अल थानी, उन्होंने टीम कतर जो कि फजल अजमी एंड बसीम मोहम्मद की सेरेमनी के लिए की गई थी, यस बता दें बहुत ही जबरदस्त काम किया गया है बेत कतर नागोया में, ये शानदार प्रदर्शन के लिए इनका सम्मान हुआ है। और कतर ने पूरे 18 मेडल्स जीते हैं जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। और जिस तरह की तैयारियां कतर कर रहा है मुझे लगता है वो टाइम दूर नहीं है जब इसी एशियन गेम्स को कतर में होते हुए हम देखेंगे और कतर टॉप 5 में होगा। दोस्तों कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसके लिए मैं हमेशा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स का एग्जांपल देता हूँ। चाइना को जब बीजिंग ओलंपिक होस्ट करने की मेजबानी का अनाउंसमेंट मिला तब चाइना ने अपने यहाँ ढेर सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स बना दिए और लाखों बच्चों में से 60,000 बच्चे निकाले गए। वो अलग अलग सेंटर्स में जाकर ट्रेनिंग लेते थे, उन 60,000 में से फिर फाइनली लगभग 1,000 का कंटिजेंट रहा होगा जो कि उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। और चाइना ने यूएस, यूके जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया और टेबल पर नंबर 1 रहे, अपने ही घर में ये प्रदर्शन किया जिससे उनके देश का नाम पूरी दुनिया में हो गया। और तब से लेकर आज तक चाइना ओलंपिक्स में अब हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है मौका सारी कंट्रीज के पास होता है, बस राइट टाइम पर खिलाड़ियों की सही मेहनत अगर रंग ले आए तो ओलंपिक से क्या, किसी भी खेल में आप नंबर 1 की पोजीशन पर ही रहेंगे। और कतर ने वो कारनामा किया है अपने हर स्पोर्ट्स को एक जबरदस्त तरीके से माहौल बनाकर, एंड स्पेशली पैडल जिसने कतर में एंट्री मारी होगी इस डेकेड में और उसी में इतना बड़ा हो गया कि पूछिए मत। मैं कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है कतर पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करेगा कि मुल्क का साइज कुछ भी हो अगर मेडल की हाइट को छूना है तो उसके लिए बस सही जज्बा रखना होगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
6: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार एक वो भी दौर था, स्कूल से लौटना, फिर पार्क में दोस्तों के साथ खेलना, फिर शाम को स्कूल का होमवर्क करना, और इस बीच में ट्यूशन जाकर वापस भी आ जाना। यार हमने भी अपनी पढ़ाई ऐसी ही की है, हालांकि पढ़ाई कम कर पाते थे पर ट्यूशन पे जाके मस्ती धमाल हमेशा करते थे। एंड इतना ही कहूँगा यार कि कुछ चीज़ें ना लाइफ में ना एक फेज में ही आती हैं, और स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है। अब हमें टेंशन इस बात की होती है बॉस के कल कौन से मेल का जवाब नहीं दिया, बॉस कौन सी बात पे फटकारने वाले। और एक ज़माना था स्कूल डेज की बात है, आया है क्लास में जाएंगे, श्रुति को देखेंगे, नादिया को देखेंगे, यही खुशी रहती थी मेरे मन में। फिलहाल जिंदगी का दौर बदल गया दोस्तों, अब हम कल बच्चों से फिर मिलने जा रहे हैं आइडियल इंडियन स्कूल के जूनियर विंग में। बहुत सारी क्लासेस के बच्चों से मिलेंगे, बहुत सारा फन मस्ती धमाल करेंगे, एंड जो भी होगा वो आप हमारी स्टोरीज पे चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि GWM मिर्ची रिचार्ज इज ऑल सेट फॉर टुमारो। एंड मस्ट मोलो गौरव, अंशु, आफरीन, हम सब होंगे वहां पर, बस आपका साथ चाहिए। स्टोरीज को रीशेयर करते रहना, अपने बच्चों को भी दिखाते रहना, ताकि सबको पता लगे कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। 89.6 मिर्ची 1 से मी सिंह टडवाबाय लौटेंगे कल शाम, शाम शानदार में बच्चों के ढेर सारे फन मस्ती धमाल की आवाज को लेकर यही मिर्ची पर। तब तक ले हबीबी, मा सलामा मिर्ची थॉट।
1: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा फ्रॉम किंग खान एंड वन एंड ओनली
2: यो यो हनी सिंगर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Bollywood Only on Mirchi It's hot
4: Khat khat
5: Kaun hai
4: Ishant
5: Ishant kaun
4: Ishant Gadadhari Bhim Ishant
5: Khat khat Who that
6: Only on 89.6 Mirchi 1 Mirchi It's hot

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं. कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंडट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं. उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं. हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का, बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन. और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया. सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना, ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed. लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका. Turn the volume up. This is the Mirchi Top 20. Let's go.
2: Number 19.

तमन्ना भाटिया के एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह है, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। I've already spoken about this song last week, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है।

0: टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय सालगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
2: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
1: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
2: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
1: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
3: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, मिर्ची वन। It's hot.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
8: नंबर 12।

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलोडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है। देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है। बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहां इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कट।
7: अबे कौन है?
6: उत्तपा।
7: उत्तपा कौन?
6: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
7: खट खट हो दैट।
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नंबर 5।

0: कुछ फिल्म मेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूव तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी के हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड ऑल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है, किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड ऑल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
4: I don't have to mouth those
5: lines. Sorry, bro. Sorry.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन इन दिस जॉनर एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
9: नंबर टू
10: फन

0: वारू नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते, और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है। यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो गहने और वो घोड़े उस स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 येट अगेन।
1: नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline.
3: Yes, of course, Mirchi Helpline, bataiye.
2: Hey, mota bhai, meri maid baar baar chuti par chali jati hai, main kya karu?
3: Are to badhiya hai na, tu bhi office se chutti le le, aur maid ke saath chutti enjoy karna daale.
4: Hey, utha le re diwa, utha le re baba.

पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, और ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
3: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया
3: जी।
4: कुकड़ू को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
6: खट खट
7: हू दैट
6: जाहिर
7: जाहिर जाहिर हूँ
6: जाहिर सी बात है मैं ही हूँ और कोई नहीं।
7: खट खट हू दैट
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाई, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनके करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ, भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वहां पर सब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: कौन है?
5: दवे।
6: दवे कौन?
5: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
6: खटखट, हु दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया, और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ। नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए, और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
3: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में, 13 years में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में, है ना? पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? आहा, इतनी आसानी से नहीं। गाने सुन करके वापस आओ, फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: ए मोटा भाई, मेरी मेड बार बार छुट्टी पर चली जाती है, मैं क्या करूं?
2: अरे तो बढ़िया है ना, तू भी ऑफिस से छुट्टी ले ले और मेड के साथ छुट्टी एंजॉय करना डालेंगे।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो विनीत जी।
4: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
4: सही है।
3: हाँ
4: मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
4: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
4: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
4: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
4: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
4: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
4: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
4: हेलो हेलो।
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
4: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये है?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
4: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप मुर्गा बन मानिए काम।
4: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे बजाने वाले थे?
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: खटखट
8: पूरे
7: बनता
8: बनता हूँ।
7: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
8: खटखट हूँ दैट
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रहा। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी इन दी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान, सुन करके यहीं वापस आना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता क्या थी, अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
5: Toilet?
4: हाँ.
5: School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
4: तो दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: 89.6 आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जाकर के घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था। तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो हाँ जी बोलिए।
3: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
3: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
3: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
3: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है।
2: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो। हाँ बताइए।
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
3: हेलो।
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
3: फोन नहीं कर रहा अभी मैं
2: आप अब देखिए, बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए। मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
3: चप्पल पता
2: नहीं कहाँ कहाँ से नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
3: फोन नहीं कर रहा अभी
2: मैं आप अब देखिए, बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए। मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
3: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से
4: हमारी आवाजें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो।
2: ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
7: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
8: डन।
7: अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
8: ना, ना, ना।

0: है,
1: तुमको मुझसे प्यार है।
2: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वॉज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी वापस और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: खट खट,
2: कौन है?
1: स्टेन।
2: स्टेन कौन?
1: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
3: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म्स ही वाज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: 89.6 मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।